0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड,
9: 01274201679।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट,
10: 01274201679। UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
2: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: One Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवीज
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 0780.

0: मिक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। लुक्का गिरी करके अपना टाइम पास होता है, बीड़ी पान चाय मिलता है, बस अपुन खुश। ये प्यार का लफड़ा लोचा काई को, अरे काई को रे,

अपन का बीड़ू लोग सलाद डर गया बोला

0: लिए बाप
1: पप्पू का खोपड़ी सक्का। कल्लन को पकड़ा और बोला इधर आ शाने, तेरे को कयामत दिखाता हूँ। साले को इतना धोया अभी तक थोबड़ा वाकड़ा है और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है। समझा? समझा क्या?
2: फिर हेमा का क्या हुआ?

साला एक एक सपना देखा था, लेकिन मां कसम में एक आंसू नहीं रोया। काय को रोएगा, काय को रोएगा, साला अपनी जेड़ा था ना। अगले दिन वही पहले के माफिक लाइफ चालू, वही गंदे ग्लास में चाय, वही पान बीड़ी। अजीज को इतना मारा लोग समझे वो मरेगा। भूलने का है, भूलने का है, पर क्या करेगा।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी।
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू। सुबह

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी

जी बहुत ही काबिल एहतराम, अब तो और भी ज्यादा काबिल एहतराम सवाइन क्राम के आज देखे अशोक का हमेशा की तरह फिर आज कोई फॉल्ट नहीं। ये नहीं कि मैं अपनी गलती नहीं मानती भाई, बड़े बड़े शहरों में बहुत कुछ लगा रहता है और जितना भी हम टाइम का मार्जिन रख के घर से निकले, लेकिन सूरत हाल जो है गंभीर सूरत हाल का आपको अचानक से वास्ता पड़ सकता है। तो जनाब मैं क्या ख्याल है कि माजरत करूं या आपके साथ ऐसे ही बस एक वजाहत कर दूं कि जी वाकई वहां पे ट्रैफिक रश में अब एक जो बिग व्हीकल्स होती हैं हमने उनको एक ऑनरेरी जिसे कहते हैं ना रिवॉर्ड देना होता है कि वो, और स्पेशली वो जब वो रिवर्स कर रहे हैं इतने बड़े, एक तो बेचारों के पहले जान पे बनी होती है, अगर हम भी रश डाल दें रौला डाल दें तो बुरी बात है। और यही कुछ तो हम फिर आपस में बातें करते हैं कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, जियो और जीने दो के असूलों पे, और ऑलरेडी थैंक यू अदा कर रहे हैं कि आप पेशेंट हैं और वेट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पीछे पीछे पुलिस गाड़ी भी खड़ी थी, मैं चुप हो गई। मैंने कहा ओ हेलो, यहां पे तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं है, बंदे की पुत्र बन के बैठी रहे। लेकिन मैं उनको हाथ के इशारे से वॉच की तरफ इशारा कर रही थी कि आई एम गेटिंग लेट लेट लेट, लेकिन वो फिर भी मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो जनाब ये बातें लगी रहती हैं, चाहे हम टाइम का मार्जिन रख के घर से निकले, लेकिन ये जो था ऑल ओवर सडन और इमरजेंसी सिचुएशन, अल्लाह ना करे अल्लाह ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से हम सबको सेफ एंड साउंड रखे, लेकिन ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं इनका ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए फिर एक दफा माजरत आपसे कि थोड़ी सी आयशा अख्तर लेट होगी, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आज के जो मेरी गानों की सिलेक्शन है आपके एंटरटेनिंग जो तफरीह तबाह के लिए आज म्यूजिक है। और सबसे पहले देखें हम मुझे यहाँ पे उस्मा इशफाक अहमद साहिबा का ये बहुत ही बेहतरीन जो है कॉल लगता है, ये उनका कॉल है और वो कहती है कि लव योर सेल्फ बिफोर यू लव अदर्स, ब्यूटीफुल है जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतनी मैंने अपनी मोजज़ जो कॉलीग है उनका भी हवाला दिया। तो ये होता है कि मोहब्बतों का सफ़र सबके साथ रहना चाहिए। और फिर आप मेरे ब्यूटीफुल लिसनर्स माशाल्लाह, ब्यूटीफुल फॉलोअर्स माशाल्लाह, नाउ ऑन टिकटॉक ऑन यूट्यूब मीडिया बहुत कुछ आपसे बातें करनी है, और रियल और रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए ऑनेस्टली बिलीव मी ट्रस्ट मी आप कहेंगे कि वाओ ये बातें तो वाकई हमारे जहन में कभी आई नहीं। लेकिन ऑनेस्टली आप इससे न सिर्फ लुत्फानंदोज होंगे बल्कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी पर इनका इम्प्लीमेंट रखेंगे तो यकीन करें कि हमारी जिंदगी न सिर्फ आसूदा हाल बल्कि बहुत ही खुशियों से भर जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी एक ये हम सब आप जितने भी मेरे लिसनर्स इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं आप सबका एक दफ़ा तह दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ, ममनून हूँ आपकी कि आपने मेरा बहुत वेट भी किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अलामा इकबाल का कि वो इकबाल लेट गए किसी महफिल में तो वो कहते हैं कि जी आप लेट क्यों आए, तो वो कहते हैं इकबाल हमेशा लेट आता है। गौर कीजिएगा इस सेंटेंस के ऊपर कि इकबाल हमेशा लेट आता है, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, इसके ऊपर भी सोचिए। और ये जो सॉन्ग है ना इस वक्त सो अमेजिंग ब्यूटीफुल, ट्रिब्यूट करती हूँ आप सबको, अपने आप को डेडिकेट करती हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे ये अपने लिए सुनना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो झूमिए और सुनिए इस खूबसूरत से सॉन्ग को, इसके बाद आपसे वंडरफुल अमेजिंग वेरी इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल हमेशा की तरह गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। जी जनाब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत, हम सब अपने आप को ये स्पेशली फीमेल ट्रिब्यूट करती हैं, और इमेजिन किन हस्तियों का करना है जो आपको बहुत लविंग केयरिंग आपके लिए पर्सनालिटीज हैं, उनका इमेजिन करके खूबसूरती में खो जाएं गाने के, और फिर मुझे बताइएगा आप सबको कैसा लगा, आइए सुनते हैं।

जी बिल्कुल मोज़ेज़ सामईन इकराम, यही जिंदगी का उसूल है और खूबसूरत रंगारंगियों में खोने का टाइम अभी आपसे मिलते हैं।

जी बिल्कुल मौजूद सामईन कराम, जी बिल्कुल। अब मेरे सामने जो है अमेजिंग सा, वंडरफुल सा एक सॉन्ग भी है, जिससे आज आपके लिए मेरा पूरा मकसद ये है कि रियलिस्टिक, यू नो, रियलिस्टिकली हम एक ऐसा सफ़र तय करें जिंदगी का जो हमें हकीकतों से रोशनास करवाए, हकीकत के साथ साथ जुड़े रहने के साथ साथ हम ये सफ़र इतना सुहाना करें कि आपको और मुझे पता ही ना चले चले कि वक्त कितनी तेज़ी से भी गुजरा और ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो है, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये बड़े अल्लाह ताला हमें जब ये अनायत करता है ना, खूबसूरत से पल इनको समेट लेना चाहिए। एक शाम जिसे कहते हैं ना आपके नाम, तो आज का ये प्रोग्राम आपके नाम और आप ये प्रोग्राम मेरे नाम कर दें, तो हम सबका साथ मिला जुला जो है वो अमेजिंग बनाएगा आज के प्रोग्राम को। आप यकीन करें मैं झूठ नहीं बोलती बिल्कुल, और बहुत कोशिश करती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में भी, इसलिए अवॉइड करती हूँ कि जहाँ मुझे कहीं झूठ का नज़र आ रहा हो ना, पलड़ा भारी हो रहा है तो पीछे हट जाएं, साइड पे बड़े तरीके से। यस, मज़े सामईन इकराम, घड़ी तो बता रही है कि हमारा जो ये प्रेशियस, वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो सिर्फ एक इतनी यूनिक सी गुफ्तगू के लिए है कि फिर हमारे वो आद बोच लेंगी, वो जो हमारी एडवर्ट्स है, कमर्शियल, जो हमारी ब्रेक, जो कमर्शियल ब्रेक पे जाना होता है वो हमें दबोच लेगी। तो उससे पहले बहुत ही खूबसूरत सा जिंदगी को हसीन बनाने के लिए एक टच देने लगी हूँ कि आप यकीन करें कि अल्लाह ताला की जिंदगी जो है ना, नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, इतनी नेमत है बड़ी कि अगर हम आंखें खोल के इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छे मुकाम पर और कितनी अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज कर हमें, और क्या हम शुक्रगुजारी के इस जिम्मे में अपने आप को रखते हैं या नहीं। अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया, माशाल्लाह, हम सब खूबसूरत हैं। लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, अल्लाह ताला ने इसमें कोई तकसीम की कि वो बहुत प्रीटी है, वो नहीं है, ये नहीं। आज का टॉपिक भी यही है, हम जिस किस्म का लेंस पहन लेते हैं, फिट कर लेते हैं अपनी आंखों में, हमें दुनिया जो है ना उसी रंग की नजर आने लगती है। इन बातों को आज मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अरक निचोड़ के आप लोगों के लिए तैयार की हैं, और यकीन करें कि क्या किस किस्म का लेंस अपनी आंखों में फिट करना है।

जी बिल्कुल, मौज़े सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग सुबह 9 में एक ऐसा, मैं कहूँगी कि दिलकश सा प्रोग्राम आपके लिए जो कि मैंने तैयार किया है और आप जो है मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, राइट क्योंकि आपकी तरफ से भी जो आपकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, आपके तखय्युलात, आपका सोचने का अंदाज, आपकी फीडबैक जो मुझे मिलती है, जैसे आप आयशा अख्तर की हर वक्त हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेडियो टीम, हम सब जो है मिलके रोशनियों का भी और खूबसूरतियों का एक ऑलरेडी सफर तय कर रहे हैं, उनको चार चांद लगाने के लिए, बल्कि चांद ही चांद लगाने के लिए आज का प्रोग्राम जो है बिलखसूस आपके लिए तैयार किया गया है। जहाँ कहीं आप तशरीफ़ फरमा हैं, काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं वो किचन में मसरूफ़ हैं और काम के दौरान जो है आयशा अख्तर को सुनना पसंद कर रही हैं, तो मैं आपकी पसंद के साथ साथ हूँ माय डियर लिसनर्स। यस, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही आपसे बात की कि रियलिस्टिक वर्ल्ड, देखिए ये अब हम ये रहते थे हम इमेजिनरी वर्ल्ड में, ड्रीम लैंड में, जब देखिए टू यंग बंदा जब एक स्कूल कॉलेज यूनी की चले जाए लाइफ होती है, फिर हम बड़े एक अपनी हमारी वर्ल्ड होती है, लेकिन जब हकीकत की दुनिया से वास्ता पड़ता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, किसको नहीं पता, और कहाँ पे हमें सेक्रीफाइस करना है, कहाँ पे, अच्छा ये सारा कुछ चलता है। फिर आप कहेंगे कि वही यार वो मसाले वाली और वो किचन वाली हांडी वाली बातें मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं मीडिया से चलें बात करती हूँ। मीडिया के हवाले से हमें हमारे ग्रानों में सिखाया जाता है बचपन से ही, अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज रियली वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि नमाज, कुरान, माशाल्लाह, दुरूद पाक पढ़ के बस अपने फेस पे और अपने ऊपर माशाल्लाह ब्लो कर लो तो अल्लाह का नूर, हिदायत, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पर्सनालिटी को घेरते, आप सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो भी दीन धर्म जहाँ कहीं भी मेरे जो खूबसूरत लिसनर्स जो हैं, मेरा प्रोग्राम माशाल्लाह जो है ओवरऑल जो है मल्टी कल्चरल सोसाइटी में सुना जाता है, वो भी अपने अकॉर्डिंगली करते हैं अपने दीन धर्म के मुताबिक। मैं जहां काम करती थी पहले तो वहां पे भी वो अपने अकॉर्डिंगली सुबह सुबह अपनी वो करते थे इबादत, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आप आयशा अख्तर का, और फिर तब होता था कि बस जी वो लिमिटेड सा रेडी हुए और

जी तो हम समझते थे कि वो इनफ है, मोर देन इनफ, और बस वो कभी ओकेजनली ईद शबरात वेडिंग्स वेडिंग पार्टीज हैं, बर्थडे पार्टीज, दिस एंड दैट, उसके अकॉर्डिंगली जी रेडी हो गए. और नखरे हमारे आसमानों पर के पेरेंट्स के साथ जब रह रहे हैं कि बीजी हम तो बहुत अपने फ्यूचर करियर के लिए जो आप हमारे लिए राहें मुतय्यन कर रहे हैं, तो हम जी बड़ी मेहनत से बड़े अजम से लगे हुए हैं आपकी तमन्नाओं को, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, राइट. और जी बड़ा ये भी एक वर्ल्ड होती है, आप सबको पता है इसके बारे में. इस पे भी आगे चलते हैं, इससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर क्या. चलें चलें जी, माशाल्लाह मुकमका हो गया जी, हूँ छड्डो जी, हूँ निकले तुसी, चलो. ओ कहिंदे घर वाले शुक्र अलहमदुल्ला अपने घर दी हुई. हम खवातीन के लिए ये कहा जाता है, ठीक है. ओ फिर अगे आन के एक नई दुनिया, ओ कहिंदे उन्होंने तो जान छड़ा ली, हूँ साढ़े पल्ले ये कौन कहिंदे आ, जरा इस बारे च सोचना सी, ठीक है. ओए ऐसे भी नहीं, फिर हम कहते यार इनको ऐसे नहीं कहने देना, हमने हमने बड़ी समझदारी से, अक्लमंदी से, और हमारे गिर्द एक नए और अजनबी माहौल के साथ साथ हमारी दुनिया ही एक अलहदा हो जाती है. और उस वर्ल्ड में जो हमें देखिए, हमारा दौर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर पे भी बात करेंगे, हमारे दौर में वो मुझे अभी भी याद है, महारानी जी उठ के आ गई हैं टाइम. अच्छा मुझे एक लतीफा याद आ गया, बहुत ही खूबसूरत, वंडरफुल, आप इतना हंसेंगे ना. और यकीन करें ये बातों से बात निकली है, मेरी बिल्कुल कोशिश होती है कि मैं एक जेन्युइन माहौल रखूं, नेचुरल किस्म का, कि आप कहें कि वाकई ना इस वक्त जो नेचर है, वी आर रियली क्लोज टू नेचर, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल हो देखे, वो कहते हैं नेचुरल नेचुरल ब्यूटी, राइट. अच्छा जी, तो फिर क्या होता है. वो एक शादी होती है लड़की की, तो वो जब ससुराल घर में जाती है तो ऑब्वियसली देखे, ये तो देखे, अब आप सबके, हम सबके अरमान जो है ना, उन जरा लम्हात को सोचे कैसे हमारे अंदर वो लम्हे याद आ गए यार, बाल बच्चे. अच्छा खैर, ये भी ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना खूबसूरत दिलचस्प है आज का टॉपिक, के मैं कहती हूं कि लेंस को फिट करना है बस हमने. अब जितने भी मेरे खूबसूरत लिसनर्स जो हैं, रिस्पेक्टेबल और वेरी मोजस, बहुत ही अच्छे मेरे फॉलोअर्स लिसनर्स जो है ना, वो सुन रहे हैं, फैंस भी सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम. और आई एम द पार्ट ऑफ योर कंपनी, ओके. मैं आपके साथ इस वक्त, देखिए अगर हम खुद अपना प्रोग्राम इंजॉय नहीं कर रहे होंगे, हम दूसरों को क्या एंटरटेनमेंट फ्राहम करेंगे. मैं इसे इतना अमेजिंग लवली अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रही हूँ, और साथ साथ लेके चल रही हूँ आपके, और आपके साथ साथ चल रही हूँ, डोंट वरी. अच्छा, वो उस लड़की की शादी हो जाती है, और फिर क्या होता है आप सबको पता है, फिर क्या होता है, लेट आना सबको पता है, और ये भी पता है डबल स्टोरीज होती हैं, ट्रिपल स्टोरीज होती हैं, कितनी कितनी स्टोरीज हमारे बैक होम कंट्रीज में जो है ना चलती हैं. अब यहाँ तो डबल ही है, बल्कि आपको पता है, सारा कुछ पता है. एनीवे, महारानी जी उतर के आती हैं अबाउट 11-12 o'clock. ये तो मैं एक जस्ट रफली दे रही हूँ, बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ हुआ है, सबको पता है, सबकी यादें तरोताज़ा हो गई हैं, गुलाब के फूलों की तरह और खूबसूरत पंखड़ियों की तरह, जी मीठी मीठी बातों के साथ. जी जी बिल्कुल. तो महारानी जी जब आती तो वो सास साहिबा कहती हैं पुत्र जरा घड़ी की तरफ देखना, क्या टाइम हुआ है. तो वो बताती है या नहीं, एक दिन हुआ, दो दिन हुए, जब लगातार वो आती है एवरी डे नीचे उतर के, तो सास साहिबा फरमाती हैं पुत्र जरा टाइम तो देखना. अब वो एक दिन अपने मम्मी को फोन लगाती है और मम्मी से कहती है मामा आपने मेरी किस घर में शादी कर दी है. तो वो कहती है बेटा क्यों, क्या बात है,
कहती है मामा जब भी मैं सुबह को उठ के आती हूँ देखो इनको तो टाइम भी नहीं देखना आता है, मेरी मदर इन लॉ को तो टाइम भी नहीं देखना आता, आपने किन अनपढ़ लोगों के घर मेरी शादी कर दी है। जब मैं उतर के आती हूँ मामा हर रोज मुझसे पूछती है देखो टाइम क्या हुआ है। मामा मैंने नहीं इधर रहना, इनको तो टाइम भी नहीं देखना आता है। अगर हम इन बातों को वाकई हंसी मजाक में ले लें या सीरियस लें और अपनी सलाह करें, बड़ा बड़ा कुछ ये टॉपिक चलेगा भाई। और आज था, पूरी कोशिश थी, बल्कि कंपटीशन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में सही। और फ्राइडे वो फिर अभी भी एंड पे बताऊंगी फ्राइडे प्रोग्राम के बारे में भी, इंशाल्लाह बहुत अमेजिंग इंशाल्लाह और बहुत ही खुशियों से भरपूर है वो भी, इंशाल्लाह खुशखबरियों से भरपूर है प्रोग्राम, इंशाल्लाह अल्लाह का करम है कि वो क्या। मैं तो हमेशा कहती हूँ रब्बे करीम तू दे और बंदा ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वादा कर लिया अल्लाह पाक ने, बच्चों को भी यही, पुत्र अल्लाह ने जब वादा कर लिया है तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, तो इसी तरह नेमतें बढ़ाते जाओ। और हमेशा अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफियत वाली जिंदगी, सेहत वाली अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, हमारे घरों में खैर बरकात, हमारे बाल बच्चों की खैर, आमीन। साथ साथ दुआएं मांगना चाहिए, कबूलियत का वक्त होता है, ये भी इस्लामिकली आपको इस बारे में सारा पता होगा। जितना बहुत अच्छा लगता है रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना और रियलिस्टिक बातें करना। वो इतना खूबसूरत वो जोक था या एक क्लिप देखा था मैंने, अगर हम वाकई इस बात को कि वो हमें याद दहानी के तौर पे टाइम दिखाया जाता है या वाकई उनको टाइम नहीं देखना आता, इस बारे में सोचिए। और सोच के साथ साथ इस खूबसूरत अमेजिंग सॉन्ग को नहीं भूलना, सुनते रहें अच्छी अच्छी सोचे सोचते रहें, जाना कहीं नहीं है, हिलना नहीं है। आयशा अख्तर के संग आज का पूरा प्रोग्राम ऑनेस्टली स्पीकिंग वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप कहेंगे थकान ही दिन भर की उतार दी है, भाई क्यों यहाँ पे आते हैं, 3 घंटे में अगर हम अपने सुनने वालों की थकान ना उतारें और उनको अच्छे मोमेंट्स ना दें फिर प्रोग्राम ही करने का क्या फायदा है, फिर मेरा वक्त जाया करने का मैं यहाँ पे वक्त जाया कर रही हूँ। ठीक है, किताबी बातों से निकल के हकीकी दुनिया का सामना करते हुए खूबसूरत चुटकुले जिसे कहते हैं सुनाते हुए और सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, और साथ साथ म्यूजिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मुझे पता है मेरी फ्रेंड्स की जो अव्वलीन चॉइस और पसंद होती म्यूजिक होता है जनाब, खूबसूरत तरीन ये सॉन्ग आपको महजूज कर देगा, लुत्फ अंदोज हो इस ब्यूटीफुल सॉन्ग से।

0: जी जी बिल्कुल सामाई निकराम, उम्मीद करती हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आप इससे लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइज करके लेके आई है आज जी, और मैं भी आपके साथ इन लम्हों से अल्हम्दुलिल्लाह महजूज हो रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। देखें, हम पॉजिटिव पहलू से देखें कि हम घरेलू ख्वातीन स्पेशली बच्चे घरदारी माशाल्लाह और पूरा एक कुनबा जो है हमारे रिलेशनशिप्स हमारी जिम्मेदारियां आपको पता है कि मर्दों से कुछ ज़्यादा हैं। और खैर मैं कोई ऐसी मानी खेज बात नहीं करना चाहती कि फिर जिसके ऊपर क्लैश भी पड़े, तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस रियलिटी ऑफ लाइफ जी बिल्कुल हमारी फैक्ट ऑफ लाइफ है कि जिसको, और इसके साथ साथ हमें इतना अमेजिंग भाई हमें तो इस वक्त इन चंद लम्हात ऑनेस्टली बिलीव मी कि जब हम खूबसूरत लम्हात में गिरते हैं ना तो वो चाहे 3 घंटे वो पहले सुनने को होता है लेकिन यूं खुशी खुशी अगर पल गुजरे ना पता ही नहीं चलता टाइम का। और यही मकसद होता है और आपका भी यही मकसद होता है कि आप आयशा अख्तर के संग रह के बड़ी क्यूट क्यूट सी बातें भी सुने साथ साथ से एक लुत्फानंदोज हो म्यूज़िक के सिलसिला से। तो जी बिल्कुल अभी थोड़ा सा टाइम मैं निकाल रही हूँ बातों के लिए बिफोर एंड आफ्टर द ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको खूबसूरत फिर वही बात आ जाती कि मुझे पता है मेरी फ्रेंड्स को मौसीकी का कितना खूबसूरत अच्छे मेयारी और दिलकश सॉन्ग्स का कितना शौक है। तो जी जनाब मैं बिल्कुल आप सबका ख्याल रख रही हूँ और चूंकि अभी मेरी ब्रेक का टाइम है तो इसलिए थोड़ी सी हकीकत की हकीकत पर मबरी बातें कि मीडिया के हवाले से बिलखसूस या आप को किसी ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ जाता है कि आप समझती हैं घर से घर में और रिश्तेदारों से हो सकता है बच्चों के हवाले से अपने हस्बैंड के हवाले से कोई ऐसे नए रिश्ते बनते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत दरकार होती है तो उस मेहनत से कभी भी ना घबराएं। बिलीव में आप कभी भी उस मेहनत से पहले कहाँ इतनी अकल होती है, मैं तो खुद को कहती हूँ अपने आप को इतनी अकल जो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है हमें यूं जो हम अपने देखे ये हर एज जो है अल्लाह ताला का गिफ्ट है, हम उसको एक मुंजमे एक जगह पे करके किसका दिल चाहता है कि वो लाइफ में आगे बढ़े। और ये अलहदा बात है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी के, यही आज के प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगी को इन इन तमाम बातों को लेके अपने आप को कैसे खूबसूरत रखें, अपनी ब्यूटी मेंटेन रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और भाई सेहत का जब ब्यूटिशियन नहीं हूँ मैं, ये डिस्क्लेमर यहाँ पे बड़ा मारना पड़ता है बताना पड़ता है, मैं कोई ब्यूटिशियन नहीं हूँ या स्किन केयर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, वो तो मैंने आपको सामने शाजिया को मैं लेके आई थी उस वक्त, अभी भी और भी माशाल्लाह मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड्स इंशाल्लाह धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आज टेक्नीशियन जो है हमारी रेडियो टीम अनथक कोशिश कर रही मेहनत कर रही है कि जल्दी से ये फॉल्ट जो है टेक्निकल फॉल्ट हमारा जो फोन के अंदर है तो वो कवर करें। तो जनाब बात ये हो जाती है कि जब हम किसी भी, तो फिर ये जो थोड़ी सी मेहनत है ना जिसे हम घबराते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आप यकीन करें कि ये मेहनत हमें अल्लाह ताला का एक रिवॉर्ड समझ के एक्सेप्ट करनी चाहिए और फिर जो हमारी तरक्कियां अल्लाह ताला हमें तरक्कियों की तरफ लेके जाता है, हमारे मर्तबे बुलंद होते, यही तो राज है ज़िंदगी का, यही तो राज हमने पाना है और इस राज को लेके अपनी ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरत तरीन बनाना है। दुआगो हैं जी, आप भी हमारे लिए दुआगो रहें, हम भी हैं, हम सबके ऊपर अल्लाह ताला आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल सामईन इकराम इंतज़ार हो रहा है छोटी सी ब्रेक का, और छोटी सी ब्रेक के बाद आपके मनपसंद जो सॉन्ग्स हैं गीत हैं वो ज़रूर आपके नज़र किए जाएंगे और बातें भी आपके साथ साथ खूबसूरत बातों का सिलसिला जो है जारी सारी रहेगा। जी बिल्कुल कहीं नहीं जाना जी, चलते हैं एक ब्रेक पर।
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
14: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
15: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
14: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी बिल्कुल मौजूद सामीन इकराम, परफोरेशन रेडियो 1413 AM पर आपकी होस्ट, आपकी मेजबान और आपके लिए ये खूबसूरतियों का सफर सजाने वाली आयशा अख्तर जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जी, परफोरेशन रेडियो 1413 AM के स्टूडियो में जी लाइव हाजिर हैं जी आपके लिए। मेरी अभी नज़र गई है इस वीडियो पे, वो जो एक्ट्रेस है इसका आईलाइनर बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। वैसे हम ख़वातीन को वैसे यही होता है कि देखें मेकअप कैसा है, कैसी मेकअप की लुक है, आईब्रोज़ भी जो हैं वो भी अच्छे बने हुए हैं। तो खैर इससे हटके थोड़ा सा जी हमारी वेबसाइट broadforationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। मेरा ख्याल है कि पहले मैंने मेंशन नहीं किया है इसलिए कि वो शायद फोन जो है उसको हम सेट कर रहे हैं, अनथक कोशिशें रेडियो टीम की जा रही है, मैं तो प्रोग्राम कर रही हूँ ना भाई, आपके साथ हैं हम। आप ये बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपकी चॉइस। वाकई ये तो पूछना मैं भाई कैसे पूछ सकते हैं और कैसे आप जवाब, क्योंकि चलें थोड़ा सा इंतज़ार है, बस थोड़े से इंतज़ार के बाद कॉल्स जो हैं हमारी बहाल हो जाएंगी, लेकिन फीडबैक तो आपका कहीं से भी कभी भी मिल जाता है। फिर मैं कहती हूँ देर आयद दुरुस्त आयद, कोई बात नहीं। अगर अभी आप नहीं कोई कॉम्प्लीमेंट्स या कोई फीडबैक नहीं देते तो फिर कोई बात नहीं, हमें आपकी फीडबैक जो है वो मिलती रहती है जनाब। तो सोच रही हूँ कि आपके लिए कोई अच्छी सी बात कहूँ या फिर ये खूबसूरत सा सॉन्ग आपको डेडिकेट कर दूँ, तो क्योंकि मुझे ये सॉन्ग जो है खुद से भी अच्छा लगता है और उम्मीद करती हूँ कि ये सॉन्ग जो है आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो इस वक्त वाकई अगर आप हमें बताना भी चाहें तो फ़ोन के ऊपर कैसे बता सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी आरा से भी मुतफिक होती हूँ और मुझे पता होता है आपको इस वक्त जो है कौन सी जो है म्यूज़िक के हवाले से बात अच्छी लगेगी, या कोई जो मैं बात आज के टॉपिक पे कर रही हूँ आपसे अभी बहुत से सवालात पूछने हैं और आपकी आरा को प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। अगर आप अभी अपनी आरा और गुफ्तगू जो है मुझ तक नहीं पहुंचाते तो कहीं जब मैं मिल जाती हूँ तो उस वक्त आपने ये बात कही थी तो हमारे जहन में ये आ रही थी, कोई बात नहीं, अपने हमने जहनों को खोलना है, वसी करना है, फराख करना है, और बात हो रही थी कभी अचानक से सिचुएशन का किसी का सामना करना पड़ जाता है हम खवातीन ने स्पेशली। बाकी देखिए ओवरऑल सबके लिए है, हमारे ब्रादरान के लिए, सबके लिए मेल फीमेल जो है हमारे प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो बात यह है कि अगर हम फीमेल के हवाले से बात करें तो हमने कहीं डरना घबराना नहीं है और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना, यकीन करें। इस्लामिकली भी इसके बारे में आपको बहुत कुछ इसकी डिटेल्स मिलेंगी और ये भी हम इस्लामिकली ही जा रहे हैं इस पेज पे, लेकिन वो टू स्ट्रॉन्ग किस्म की मैं जो है ना वो आप समझ गए होंगे बातों के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये भी बहुत ही एक खूबसूरत सी हमारी जो है कलेक्शन है बातों की और हमने इन बातों को इतने खूबसूरत अंदाज से करना है और जिंदगी के मकासद को एक दूसरे के साथ जेलसी किए बगैर, एक दूसरे के ऊपर तनकीद, क्रिटिकल जिसे कहते हैं ना, क्रिटिकल तनकीद की क्रिटिसिज्म जो होती है ना, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म, उसे अपने आप को बचाते हुए पॉजिटिविटी की तरफ जा रहना है और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए हौसला। मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा क्लिप भी लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ज़रूर उसे देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इम्पार्शल रहते हुए कि मेरी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव रहें। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ टू एनी वन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आइदर दे आर यू नो इस रिलेटेड टू माई फैमिली और आउट ऑफ फैमिली और इन द सोसाइटी और वेर एवर आई गो, माशाल्लाह आई नेवर नेवर कंपेयर माई सेल्फ टू एनी वन। आई नो माई एबिलिटीज़, माई स्किल्स,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू माय अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माय अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, एंड आई आस्क फॉर गिवनेस फ्रॉम माय अल्लाह। ये भी देखिए ना, दिस इज द, ये इस्लाम है ना, इस्लामिकली भी बात हो रही, ओवरऑल ऑल रिलीजन, कौन सा रिलीजन ऐसा है जो इखलाकियात के ऊपर दर्स नहीं देता? तमाम जो रिलीजन है उनमें ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी बेस पे बात हो रही है, राइट? दिस इज द फोकस्ड पॉइंट ऑफ टुडेज प्रोग्राम, दिस इज द फोकसिंग फोकस्ड मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि व्हाई वी कंपेयर आवर सेल्व्स टू अदर्स, व्हाई? जो जिनको पता है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें हमेशा अच्छा रखा, हमेशा अच्छा दिया, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही रखे, और उन लोगों के लिए सोचना कि जो थोड़े से अभी अल्लाह की, ये अल्लाह ताला की देन है, तकसीम है, तो वो उसमें उन लोगों का अगर हमारे रिज्क में हिस्सा है तो क्या उन तक पहुंच रहा है? ये इतनी ब्यूटिफुल सी बातें हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, के मेरे लिसनर्स जो हैं, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप इतने प्यार और मोहब्बत से मेरी बातें सुनते हैं ना ऑनेस्टली, और फिर मुझे कहीं कभी शायद मैं भी कोई ऐसे सोच में मदगम, जिसे कहते हैं ना मदगम होना, होती हूँ, तो आप फिर मुझे रियलाइज़ भी करवाते हैं और बड़ी प्यारी सी आके बात कह जाते हैं, ओ फलां वक्त पे आप ऐसे कह रही थी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमने आपकी बातें बड़े प्यार से सुनी। यही अशाक्तर का रिवॉर्ड होता है।

जी मोजे सामीन इकराम, प्रोफेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर के संग आप एक खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है इन्जॉय कर रहे हैं, उससे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें, आज का प्रोग्राम जो है आपको बहुत ही महसूस कर रहा होगा और आपको रिलैक्स कर रहा होगा। मेरा मेन पर्पज़ जो होता है ना अपनी गुफ्तगू का भी, वो होता है रिलैक्सेशन हासिल करना। बिलीव मी, जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ ना, तो अगर मेरा जो है मेंटल लेवल जो है वो बहुत रिलैक्सेशन फील कर रहा है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी जो है ना वो बहुत लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। एक खुशगवार सी कैफियत में रहते हुए, एक खूबसूरतियों का तसव्वुर करते हुए और खूबसूरतियों के सफ़र में रहते हुए जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो और फिर बिलखसूस रियलिटी पर मबनी जो बातें होती हैं हम वो कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर मैं खुद अपने प्रोग्राम से जो है वो लुत्फानंदोज़ नहीं हो रही, तो दूसरों को क्या एंटरटेनमेंट हम जो है फ्राहम करेंगे। पॉजिटिव रहते हुए, खूबसूरत माहौल में रहते हुए आयशा अख्तर इससे पहले गुफ्तगू मज़ीद बढ़ाए, हमारी वेबसाइट है bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। अपने ब्यूटीफुल लिसनर्स और फॉलोअर्स से कह दूं कि हमारी जो टिकटॉक लाइव है ना, उनके ऊपर आप जाएं, bradfordasianradio live.co.uk, तो वो आपको टिकटॉक पे मिलेगी और उसमें फिर आपके हमारे जितने प्रेजेंटर्स हैं, हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम जो है अब एक नए जिसे कहते हैं एरा के साथ जो है एक न्यू दिलकश अंदाज में हम इस सिस्टम को जो है मज़ीद प्रमोट करने वाले हैं। और आपके सामने हम सब जितने भी हमारी टीम है, इंशाल्लाह एंथुजियास्टिक और डेडिकेटेड टीम है, वो आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। तो जनाब ये बातें होती रहेंगी। तो इस वक्त जो है वो आयशा अख्तर आपके लिए एक होल्ड ऑन किए हुए है, बहुत ही खूबसूरत सा एक

जी बिल्कुल सामाई ने क्राम प्रोफेशन रेडियो 1430 AM पर खूबसूरत सा प्रोग्राम जारी हो। सारी आयशा अख्तर आज के टहरे में मौजूद है। आप थोड़ा सा धीरज रखें, और ये कटहरा जो होता है ना यहाँ का, ये लाइव होता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग के इस कटहरे से ना जो बच के निकल गया ना मुराद पा गया, और वो सबसे बड़ा फनकार जिसे कहते हैं ना, और वो सबसे बेहतरीन सक्सेसफुल पर्सन है। क्योंकि लाइव में किन बातों पे ग्रिप रखनी है और किन बातों से अवॉइड करना है, बहुत सी टर्मिनोलॉजी जिसे कह लें टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है, और ये हमें प्रोफेशनल बनाती हैं, चीज़ें स्किलफुल बनाती हैं, मोटिवेट करती हैं हमें और जीने का और सहारा बनती हैं। जरूर इस बारे में सोचिएगा। हमारी वेबसाइट brafarationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। और हम बड़े एंथुजियास्टिक जिसे कहते हैं अपने जो अपना ओरिजिनल पन, आई सेड प्लीज थोड़ा सा फिल्टर दे, सेड नो, नेचुरल एंड जेन्युइन आपकी पिक्चर आनी चाहिए, सेड ओके ओके। ये तो मैं तो भाई जब अपनी क्लिप्स जो भी हैं लगाऊंगी लाइव के ऊपर, तो देखिए ये भाई हम होते तो वही है ना, हम तो सारे फिजिक्स फिगर्स तो हमारे वही हैं, एक हल्का सा हम फ्रेश लुक होती है और वो सड़ी बुसी मेरा मतलब है कैमरा जो है ना, आपको पता ही है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है कैमरा कैसे आपके, और कैमरे के आगे ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, हल्का सा मेकअप और तो हल्का सा उसके जो लेंस है ना कैमरे के भी वो फिट करने पड़ते हैं, ताकि वो जिसे कहते हैं ना कि फ्रेश लुक आए। ठीक है, बस इतनी सी बात होती है, और क्या होती है, और क्या हमने फिल्टर लगा के कोई क्या कहते कलोपैथ्रा वो तो नहीं बन जाना ना, और मलका एलिजबेथ जो कहते हैं वो हमने तो उनकी पर्सनैलिटी उनके साथ है, हमारी पर्सनैलिटी हमारे साथ है, और बस ये होता है कि हल्का सा फ्रेश लुक नज़र आए। ठीक है ना भाई, कोई ऐसी मायूब बात तो नहीं कहती, मैंने उनको ऑनरेरी रिवॉर्ड दिया है और बड़ी वो हमारी लेजेंडरी हैं जी हमारी हिस्ट्री में माशाल्लाह जिनके नाम लिए गए। हाँ जी, लेकिन हमने अपनी भी हमारी अपनी पर्सनैलिटी होती है, थोड़ी सी फ्रेश लुक के लिए हम थोड़ा सा उसमें रद्द बदल कर देते हैं जी वीडियोस में। बिल्कुल मजे सामने एक राम ब्रेफरेशन रेडियो कोडोयो के हमारी वेबसाइट जैसा कि मैंने बताया, लाइव जो टिकटॉक है हमारी ब्रेफरेशन रेडियो कोडोयो की जो लाइव होती है टिकटॉक की, उसके ऊपर हमें देख सकते हैं, हमारे कारनामे आपके सामने आ जाएंगे और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। बिल्कुल जी, हाँ जी, जहन में ख्याल आया कि जी जो माशाल्लाह बहुत लेजेंडरी हमारी पर्सनालिटीज़ हैं तो हम उनको हमेशा ट्रिब्यूट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम भी खूबसूरत नज़र आए। क्या ख्याल है जी, मिलते हैं, अब पेश करते हैं आपके लिए खूबसूरत सा सॉन्ग, सुनिए और बताइएगा, अमेजिंग सॉन्ग।

0: BradfordAsianRadio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी बिल्कुल मौजूद सामीन इकराम, ऐसा ही है। और ये हमारा प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM का जो रेडियो है, बेहतरीन। और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको बेहतरीन लगेगा। क्यों ना हो कि आपकी आरा और आपकी पसंद को हमेशा आयशा अख्तर जो है मद्देनज़र रखती है। और मुझे अच्छा लगता है कि आपकी फीडबैक मुझे मिले। और जहाँ कहीं आपको कोई क्लिप जो है वो उसे आपने तेज़ी से जैसे पुल क्रॉस करते हैं ना, वहाँ से गुजरना है, तो वो भी बता दिया करें। और ये भी बता दिया करें कि प्रोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी मनाजिल जो है वो तय कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए होता है। और हमारे जिसे कहें मद्दा सुनने वाले और फॉलोअर्स, जी बिल्कुल, आप सबके लिए प्रोग्राम को खूबसूरत बनाना आशा अख्तर की अव्वलीन तरजीह है। ऐसा ठीक है? जी बिल्कुल। हमारी वेबसाइट brafareshianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। जी दूसरा नंबर भी है हमारे पास, 07800599563। इस पर भी आप हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं। वो बात याद आ गई कि कितने नखरीले होते हैं हम। और हम ये एज का कौन सा हमारा दौर होता है जब हम कहते बस दुनिया जो है वो शायद हमारे तरीके से चल रही है, हम इसके तरीके से नहीं चल रहे। आप ज़रूर सोचें इस बारे में, मुझे बताएं कि ऐसा होता है एज के किसी दौर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वी आर कमिंग टू रियली रियलिटीज ऑफ लाइफ। जी ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं पहनना, यूं नहीं करना, ये वो तू मैं ख़त्म करके फिर हमें एक ऐसी दुनिया में एंटर होना होता है जहाँ पे हमारा एक, मैं कहती हूँ कि दिलकश हसीन दुनिया है। फिर आज का टॉपिक जो आपके सामने रखा गया कि हम दुनिया को जो लेंस हमने अपनी आंख में फिट किया है कि वो कहते हैं जिस कलर की हम ऐनक पहनते, चश्मा पहनते, उसी रंग की हमें दुनिया नजर आने लग जाती। ये जी हमारा आज का टॉपिक है। बताएं आप इस बारे में कि आपका क्या ख्याल है। जी फिर समझ आती है वो नो लाइफ तो जो है ना बेहतरीन लाइफ, खूबसूरती का रंग जिसमें झलकता है सबको साथ लेके चलने में है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक दूसरे का ख्याल रखना और बहुत सोच समझ के एहतियात से जिंदगी में कदम उठाने का नाम जिंदगी है। अपनी सेल्फिशनेस को एक साइड पे रखते हुए, अपनी इकदार को पहचानते हुए, अपनी लिमिटेशंस को, बाउंड्रीज को, उनका ख्याल रखते हुए चलना, ऐसा दिलकश एक जिंदगी का रंग है कि चलने में बहुत लुत्फ आता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसके बारे में भी सोचते हैं। और ये जो सॉन्ग है बहुत दिलकश सॉन्ग है, आइए जरा सुनते हैं ये सॉन्ग।

जी वाज़ सामीन इकराम प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर खूबसूरत सा प्रोग्राम आशा अख्तर के संग आप समाप्त फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट प्रेफरेशन रेडियो .co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। जी जनाब, आपसे प्रॉमिस किया है कि प्रोग्राम जो है वो सारा ही जो है वो खूबसूरतियों से, रंगों से सजा के हमने एक तफरीह तबा अपने लिए जो है वो ऐसी फ्राहम करनी है कि हमें थोड़ी टेंशनों से, उलझनों से, परेशानियों से निजात मिल जाए। और अगर म्यूज़िक दिलकश हो और लिरिक्स जो हैं वो दिल को छू लेने वाली हों तो फिर वाकई इंसान चले चंद लम्हों के लिए ही सही कुछ ऐसी टेंशन्स जो पाल रखी होती हैं हमने खाम खाई ज़िंदगी में, उनसे छुटकारा मिल जाता है। इस वक्त मेरे पास एक इतना मधुर सा एक सॉन्ग भी है जो अकॉर्डिंग टू द वेदर मैंने थोड़ा सा इसमें टच दिया है। और वो कहते हैं वाओ, अरे वो देखो देखो वेदर तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठहरा हुआ है, अभी कहीं नहीं जाना, बहुत ठंड नहीं आनी है, क्योंकि आपको पता है सर्दी में सर्दी में क्या होता है। तो जनाब सर्दी इतनी बर्दाश्त, लेकिन क्या है कि ये मौसम को कहते हैं मौसम अभी बरकरार है जी, इसको हम जाने नहीं दे रहे, छोड़ नहीं रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं अभी कहीं नहीं जाना, बहुत सुहाना दिल का ऐसा मौसम। और ये सॉन्ग उसकी नस्बत से मुझे वाक्य याद आ गया है और अच्छी बात होती है कि बातों से बात कोई वाक्य याद आ जाए। बहुत जब हम बड़े जी वो चुलबुली सी एज में होते हैं, सारी कजन्स जो होती हैं, सारी एक गेट टुगेदर फैमिली होती है और घर में वो जी पुलाव, मतंजन और वो जर्दा जिसे स्वीट राइस, कलरफुल राइस, वाओ क्या क्या खाने बन रहे होते हैं ना, तो साथ साथ हम बच्चा पार्टी जो होते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि बस वो अगर आपको पता है टीवी के ऊपर कोई फिल्म मूवी, अव्वल तो आपको पता ही है क्या माहौल होता है हमारे घरों का, देखने तो देते नहीं, तो कहीं मिल बैठने का मौका मिल के चलो जी साथ देख लिया कजन्स के साथ। तो हमारी एक कज़न वो भी बड़ी जॉली किस्म की, तो हम बैठे सारे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं खाने जी, छोटे होने का एडवांटेज ले टेक करते हैं ना, वही एज जो होती गोल्डन टाइम होता है हमारा कि जब हम बड़े याशियां मारते हैं, सारे बड़े जो है खाने खाने खाना वगैरह पका रहे हैं, उनके रहमो करम पे हम भी याशियां मारे। तो वो मेरी बड़ी प्यारी कज़न, तो ना अब तो सारी बात है कि सबकी माशाल्लाह शादी होगी, तो बड़ा प्यारा सा बेटा है उसका माशाल्लाह। तो वो कहती है, अच्छा उसको हम ना कजन्स ऐसे होती थी ना, अगर हमारे घर गेट टुगेदर है ना तो हम थोड़ा सा उनसे एडवांटेज टेक करते कि मुझे ये कर दो वो कर दो, कोई काम था तो मैंने कोई उसको थोड़ा सा कहा कि तो खुद, और फिर उसने क्या किया, खैर हम भी पार्टी जो होती थी ना बड़ी स्ट्रांग होती थी, उसने कहा तुम बच्चे उधर बैठी हो ना, बड़ी ये भी इशार चला करती थी, कहते तुम टीवी के आगे क्यों बैठी हुई हो, तो बड़े प्यार से तो किसी बहाने से मुझे भी उठा लिया और काम भी ऐसा होता है कि बस फिर उठना ही पड़ता है। खैर हम जी कजन्स उठ के आपस में कोई काम थे और वो जो बड़े जो है ना हमें खाने खिलाते हैं साथ, वो ईगल की नजर जिसे होती है ना उकाबी नजर, वो शेर की नजर नहीं होती ये उकाबी नजर होती है, तो ये वो बैठी है ना बड़े मजे से, तो चलो इधर आन के बच्चों वो फलां काम करके आओ। अच्छा तो चलो खैर हम भी खुशी खुशी, ये जी ऐसी होती है हम दिल पे बातें नहीं उस वक्त लेते, तो चलो जी खैर जी हम खुशी खुशी काम कर रहे हैं। अच्छा दिमाग से निकल गया हमारे के जी मूवी भी कोई, हम कोई देख रहे थे वीडियो शीडियो को, फिल्म देख रहे थे, तो है तो कितनी देर के बाद जब हम आगे ना बैठे टीवी के आगे, ओए हमने सर पकड़ लिया, हो मूवी लगी हुई थी यार उसका क्या बना, अभी हम यही सोच रहे थे तो मेरी कजन एकदम खुशी से उछली, कहती है ओ लवली, एक दूसरे को लवली बोलते, लवली वो देखो वो तो मूवी तो कहीं नहीं गई अभी तो इधर ही है दो घंटे के बाद, और उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से हमने आपकी मूवी रोक दी थी, वाओ हमने कहा अच्छा ये तो फिर अभी कहते अभी भी चल रही है, हम सब इतना हंसे उसकी इस बात पर और फिर हम भी कहें कि चलो जी खैर देखने को मिल गई। तो इसी तरह से यहाँ का वेदर भी कैच करना, वो कहते हैं ओ हाँ आज भी बहुत अच्छा है, इतनी खूबसूरत बाहर धूप निकली है, इतना प्यारा मेरे स्टूडियो का वेदर है,
आप सबका मूड बहुत जॉली है, बहुत प्यारा है मूड। इस मूड को मैं बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगी। आपके मूड को ऐसे ही बहाल रखते हुए खूबसूरत सा सॉन्ग जो है, आइए सुनते हैं और फिर आप बताइएगा कैसा लगा आपको।

जी बिल्कुल मुसाविर इकराम, मैंने कहा था ना आपसे, पहले ही कहा था जी, इससे पहले कि मैं कुछ फिर कहूँ, उससे पहले ये अर्ज कर दूँ कि ब्रॉडफॉरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर को आप समाप्त फरमा रहे हैं जी। हमारी वेबसाइट broadfordationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274 306677। क्या कहा था मैंने आपसे कि फीडबैक आपकी का इंतजार है और मौसूल हो जाएगी, हमारा फोन काम करता है या नहीं, क्योंकि क्योंकि ये हमारे हाथों में तो नहीं है, ये तो टेक्निकल चीजें होती हैं, किसी वक्त भी हमें जो है हाथ दिखा सकती हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वो जरूर आपको मैं सुनाना पसंद करूंगी और आप सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको गाना सुनवाया है ना, इसकी फीडबैक बहुत अच्छी आई है और जबरदस्त, वाओ अमेजिंग सॉन्ग जी। बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त दौड़ा जा रहा है, हम उसको कैसे कैच करें, और ये सॉन्ग हमने छोड़ना नहीं है इसको। और ये जो इससे पहले सॉन्ग वो मैंने बताया था मौसम के मुताबिक, और इस वक्त कश्तियां चल रही हैं अभी तक दरियाओं में, इससे पहले के बहुत बर्फे पड़े, सर्दी पड़े, तो अभी भी जी उनसे महसूस हुआ जा रहा है, पानी शानी जो भी है, वेदर ये वो। तो इससे पहले के बात मजीद और नहीं बढ़ानी, खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। राइट right?

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: safewayrider.co.uk।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी बिल्कुल मोहसिन सामीन इकराम, ये ब्राडफॉरेशन रेडियो 1430 AM और हमारी वेबसाइट broadfordationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। देखें वक्त का पता ही नहीं चला कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया है, और अच्छा वक्त जो है वो तो फिर और भी तेज़ी से गुज़रता है। ये सोच कैसी है ज़रूर इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। जी है मज़ा सामी इकराम, इतना अच्छा साथ आपका रहा और इतना खुशगवार आपका जो मुझे फीडबैक मिला और खुशगवार आपका मूड है जी, मुझे फीडबैक मौसूल हुई। और मौसम इतना लुत्फ़अंदोज़ जिसे कहते हैं कि हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मौसम इतना सुहाना सुहाना हो गया है और हमें तो ये सुहाना सुहाना वेदर उस वक्त और भी ज़्यादा सुहाना लगता है जब धूप निकली हो, रोशनी फैली हो, उजला उजला निखरा निखरा दिन जब होता है फिर लगता है मन भी उजला उजला और हमारा दिमाग भी रोशन रोशन हो गया। क्या ख्याल है आपका इस बारे में ज़रूर बताइएगा। साइनग्राम बहुत ही खूबसूरत बातों का मजमूआ है मेरे पास, जिसमें से एक बात की और कुछ अल्फाज की मैंने सिलेक्शन की है, ज़रूर सुनिए। मुझे भी बहुत से ये अल्फाज जो हैं खूबसूरत लगे तो मैंने इनका चुनाव स्पेशली आप सब के लिए और अपने आप के लिए किया, क्योंकि बात शुरू ही यहाँ से हुई थी कि लव योर सेल्फ, लव आवर सेल्व्स, हमने अपने आप से मोहब्बत करनी है, लव माई सेल्फ। तो अपने लिए सबके लिए कीमती अनमोल बात, रोशन ज़मीर, बुलंद अज़ाइम और पुरवकार शख्सियत के हामिल इंसान जिंदगी के हर मैदान में नुमाया किरदार अदा करते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में ज़रूर बताइएगा। जब हमारी सोचें निखरी निखरी उजली उजली हों, हमारी खूबसूरती का मैयार जो है वो आज का टॉपिक कि हमने जो चश्मा पहना है दुनिया को देखने का, उसका कलर एक रंग का है, ब्लैक पहनेंगे ब्लैक नजर आएगा, वाइट पहनेंगे वाइट, क्या हमने ब्लैक एंड वाइट पे रहना है, इसमें कलर्स का टच कैसे देना है, बुलंद किरदार प्रोमिनेंट अपना जो है प्रोमिनेंट जाज़बे नज़र पर्सनालिटी बनानी है, अपना हमारा इन्फ्लुएंस जो होता है ना हमारी पर्सनालिटी का, उसका सबसे बड़ा जो टारगेट उसका कौन होता है, हमारे अपने बच्चे जो हमारी ज़िंदगी का असासा कीमती, हमारी अपनी फैमिली होती है, हमारी इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटी जो होती है ना फर्दे वाहिद पे नहीं होती, हमारे लिए नहीं होती, ये नेक्स्ट लेवल पर तो बाद में जाने वाली है, पहले तो घर से शुरू होती, घर से शुरुआत अच्छी जब हम करते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने प्रिंसिपल साहब का जो हमारे थे माशाल्लाह कॉलेज दौर में बड़े खूबसूरत उन्होंने जो मुझे अल्फाज दिए ना, तो ये अल्फाज जिंदगी का साथी बन जाते। नफासत और नजाफत का वर्ड जो मैंने नजाफत, वाह अमेजिंग वर्ड, अगर हम शैटर्ड अराउंड मतलब एक अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं, इधर बिखरे उधर लोगों का छोड़े वो किस एंगल से हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये उन्होंने अपनी तर्ज के और अपने मुताबिक लेंस फिट कर रखे हैं अपनी आंखों में, वो उसके अकॉर्डिंगली हमसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, उन बातों के पीछे छुपा जहर जो है उनका हमें उसका असर नहीं लेना, नहीं, यही तो बात है कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए।
इस जहर को उन्हीं की तरफ हम उंडेल दें कि ये आप ही को मुबारक हो, साइड पे हो जाए उनसे, साइड पे हो जाए, तो फिर वो कैरेक्टर, उनका लेंस उन्हीं के लिए महदूद हो जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो उधर ही रह जाता है। यही करना है हमने, हम शॉक्ड हो जाते हैं, रोने वाले हमें कर देते हैं, ऐसे ऐसे नेगेटिव दिमाग के लोग मिलते। अगर इन बातों में पड़ गए ना, फिर हमारे अंदर जो कुदरत ने इतनी सलाहियतें रखी हैं, हम उनको खो चुके होंगे, फिर हम खो देंगे। इनको नहीं खोना, इनको बरकरार रखना इंशाल्लाह। और ये बातें जो होती हैं, मैं पहले अपने ऊपर मैं कहती हूँ, खुदाया मुझे अता कर, अता कर, अता कर, अता कर, बहुत अता कर, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता की गई। सोचना ही है हिकमत क्या है। और धोखादेही, शातर, शैतानियां, चालबाजियां, मकर, फरेब, इनमें और हिकमत में, तदबीर में, प्रैक्टिकली क्या फर्क है देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि जिसका दामन वो इस हिकमत से भरते हैं। लुकमान हकीम कोई नबी नहीं, कोई अल्लाह के नबी नहीं है, वो वली, वलीउल्लाह तो वो हैं ऑब्वियसली कि अल्लाह के वली हैं, कि जिनको हिकमत अता की गई और उनका कुरान पाक में जिक्र आ गया। उनकी हिकमत क्या बात है। तो ये दिखा दिया अल्लाह ताला ने कि वो एक आम इंसान है, मतलब नबी तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने नबी पीर पैगंबर जो है वो चुने हैं, उनको एक मिशन दिया गया अल्लाह की तरफ से। तो ये जो हैं एक अल्लाह ताला के बंदे हैं, नबियों की फहरिस्त से अलहदा, लेकिन उनका मकाम अल्लाह ताला ने कहाँ रख दिया कुरान पाक में, क्यों, उनको हिकमत दी गई, पता है लुकमान हकीम के नाम से मशहूर हुए। बहुत दुआ गो हूँ अल्लाह करीम से कि हमारा आपका सफ़र जो है हमेशा रोशनियों का, खूबसूरतियों का और दिल से गम दूर करने का हो, एक दूसरे के गमों का अजाला करने के लिए हो, चाहे ये चंद लम्हों का साथ हो या बहुत ज़्यादा हमारा तवील प्रोग्राम हो, जितना भी हो खूबसूरत हो और खूबसूरतियों को हम चार चांद लगाएं। क्या ख्याल है आपका।

जी मौजूद सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर की कंपनी में आप ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जो समात फरमा रहे हैं, ये वेदर को देखते हुए, इसकी खूबसूरतियों और रंगीनियों को देखते हुए ऑर्गेनाइज्ड जो थे कुछ ऐसे सॉन्ग्स, तो वो फिर एक हमारी फ़ोन कॉल्स भी मुअत्तल हैं इस वक्त, वो भी नहीं, तो फिर इसलिए कुछ वो जो बड़ा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पे रख लेते हैं उन लिरिक्स को, उन ब्यूटीफुल जो भी बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जी सॉन्ग्स का। तो ये मेरे पास जो एक सॉन्ग है, इसको सुनने से पहले मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारी वेबसाइट www.preferasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। और इस वक्त ये जो मौसम है, इतना ब्यूटीफुल मौसम सा है, और देखें ये जो एक यहाँ पे एक टर्म जिसे कह लें टर्मिनोलॉजी, या एक टर्म जो है ना, वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है किसी पर्सनालिटी के लिए। हम किसी को नेगेटिविटी सेंस में भी कह देते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में रंगीला, कलरफुल, रंग वाला। और लेकिन जो इसकी लिरिक्स में ये वर्ड आया है, तो हमने सोचा ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड को हमने जाने नहीं देना और ओल्ड म्यूजिक जो है उसको लेटेस्ट के साथ अमेजिश करके रंगों का इंतखाब आपके लिए, ताकि आप कहीं बोर ना हो जाएं। और बोर तो आपको करना ही नहीं है भाई, क्योंकि अब तो साथ भी बहुत थोड़ा सा रह गया है, प्रोग्राम का दौरानिया भी खत्म होने वाला है। जाने से पहले खूबसूरत रंग जरूर बखेरें जी, इन रंगों को बखेरने के लिए, इनसे इनकी आमेजिश से लुत्फंदोज होने के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन सॉन्ग और कोई हो ही नहीं सकता। आइए सुन।

जी मज़ा सामीन इकराम, प्रेफर एशियन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के प्रोग्राम का जो समा है वो बीता जा रहा है और समा जो है करीब ला रहा है बिछड़ने के लिए। तो उससे पहले जाते जाते बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग भी आपको सुनवाऊंगी, तो थोड़ी जी पंजाबी का तड़का हो, फिर मैं कहा चलो हमने एंड देते थोड़ा जहा लगा ही दईए ना, क्योंकि तड़का जड़ा होंदा ना हमेशा एंड ते अगर दाल दे ऊपर लगा के वाह तो वो तो दाल है ना, वो तो फिर दाल ते दाल। खैर असी क्या जड़ा थोड़ा जहा हूँ समा है ना, बहुत खूबसूरत जे चंद कीमती लम्हात उहदे विच थोड़ा जहा एक ऐसा टच दईए कि सारे प्रोग्राम का मजा किरकिरा नहीं करना, सारे प्रोग्राम का लुत्फ दुबाला हो जाए। क्या ख्याल है जी? इस तो पहले सुन लो तुसी जी साड़ी वेबसाइट ब्रॉडफॉर्मेशन रेडियो .co.uk और साड़ी स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है जी 01274306677। अपने सारे सुनने वाले का बहुत शुक्रिया भी अदा करनी, ते उन्हां दी इतनी सोनी फीडबैक और बिल्कुल तुसी तुहानू पूरा हक है जी, राइट आ जिथे कि तुसी देखो कि जी तुहानू प्रोग्राम का हिस्सा जड़ा ना वो थोड़ा जहा अपने मुताबक उन टच देना चाहते तो बिल्कुल जी असी हाजिर हाँ, तुसी सानू दस्या करो असी तुहाडा प्रोग्राम जड़ा ना इनू चार चांद लगाइए, इन प्रोग्राम नू असी वधिया वधिया। और मैं वैसे वैसे भी अपनी उधर फ्रेंड्स दे शॉप दे जन्म कहनी क्यों जी वधिया वधिया, वो कहने जी बहुत ही वधिया वधिया जी, आओ जी आओ तुसी आओ जी पहले ओ जी आया नू, मैं कहो शुक्र आओ जी रब दियां दित्तियां सारियां इज्जतां अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह है। चलो जी अच्छा कोई गल नहीं जी अच्छा अख्तर, चलो असी सोहने तरीके दे नाल तुहानू वेलकम। तो मैं कहा जी क्यों नहीं जी, बहुत शुक्रिया तुसी तुहाडा बड़ा शुक्रिया जी, वधिया वधिया। तो लो जी फिर हुण वधिया वधिया तो बहुत ही वधिया जिहा सोंग तो तुसी कहोगे जी वाकई बहुत ही वधिया जिहा, मैं कहा पंजाबी का थोड़ा तड़का ला दईए। तो जी सुनो जी फिर सोहना जिहा गीत तुहाडे लई, ते उस तो बाद फिर तुहाडे कोलो इजाजत भी चाहवांगे, ते पहले थोड़ा सोहना जिहा गीत सुन लईए ठीक है।

0: जिन्हें सॉन्ग ये गाया उन्हें भी कमाल कर दिता, बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त लिरिक्स जी साढ़े प्रोग्राम दाते। आज कुछ बस फोन बाय फ्राइडे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जी, ते फिर बड़े अच्छे अच्छे ओहदे विच भी सरप्राइजेज भी आ और गिफ्ट सब कुछ बड़ा बेहतरीन इंशाल्लाह होपफुली तुहाडे सारे और बहुत कुछ ओहदे विच मेंशन उस कंपनीज दे बारे च करने वाला कि जिहड़े बहुत ब्यूटीफुल पैकेज सन देंगे मजीद इस प्रोग्राम दे, क्योंकि अज थोड़ा जहा फोन दा हुन भी एडवर्ट्स भी उधर चल रही हैं तो मैं थोड़ा जहा बस मैंने चलो मैं उर्दू पे ही आ जाती हूँ जी के ताकि मैं जल्दी से बात खत्म करके तो आपकी एडवर्ट्स आपके हवाले कर दूं। तो जी जनाब बात ये कि बहुत अच्छे अच्छे इंशाल्लाह वेंसडे और फ्राइडे दोनों को चार चांद लगने वाले दोनों के प्रोग्राम भी एक मेरे मुंह पे ये तो लफ्ज अब आ ही गया, अच्छी बात है चांद प्यारा होता है वैसे। तो ये कि इनको ना सिर्फ और ज्यादा मैंने निखारा है अपने प्रोग्राम्स को और इसमें जो गिफ्ट्स का सिलसिला रहेगा मेरे तमाम सुनने वालों का वो कंपनीज कैसे जो हैं वो डिस्क्लोज करने वाली हैं। आज करना था, आज हमारे थोड़ा सा फोन का सिलसिला कुछ ऐसा हुआ और कुछ आयशा अख्तर थोड़ी सी लेट। एनीवे वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड प्रोग्राम और विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स आपके लिए सून आ रहे हैं जी इंशाल्लाह। ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा और आपको सबको आपके जौक शौक को आयशा अख्तर जो है वो सामने लेके आएगी। आपके अंदर टैलेंट है गाने का, नात खानी का, किरत का, जो भी है सामने आइएगा। लाइव कॉल्स भी होंगी, स्टूडियो में भी मधु करेगी आयशा अख्तर। बहुत सी कंपनीज जो हैं जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत से गिफ्ट से नवाजने वाली है, दूर नहीं जाना। आयशा अख्तर को इंशाल्लाह ताला इसी तरह से प्रमोट करते रहना है। बेहतरीन मेरी ऑडियंस और बेहतरीन प्रोग्राम्स आयशा अख्तर का वादा अल्लाह की करम नवाजी से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें, आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफा फिर दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला फ्राइडे। थैंक यू जी, जजाकल्ला खैर, ब्लेस यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
1: कार्पेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कार्पेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कार्पेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
6: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 30 6677 on 1413 AM.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
13: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
12: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
13: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग services.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर के ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.com। ये याद रखिए दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, आप हमारी बर्थ में तशरीफ ला सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.bradfordasianradio.co.uk। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी भी हिस्से में सुन रहे हैं, अगर हमारी बज में तशरीफ लाना चाहें, गजल उसने छेड़ी की इज्जत और तौकीर बढ़ाना चाहें, तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 double 6 double 7।

दोस्तों, हमारे हालचाल की अगर पूछें आप तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि आज सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जिस वक्त मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो टेम्परेचर तकरीबन 16 सेल्सियस था। ये सिलसिला किसी वक्त भी दोबारा शुरू हो सकता है। अभी तो धूप निकली है लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मौसम बेहतर हो जाएगा, हवाओं में शिद्दत आ जाएगी, लेकिन कभी कभी बूंदाबांदी का भी इम्कान मौजूद है और टेम्परेचर जाएगा 21 सेल्सियस तक। तो अब देखते हैं क्या होता है। आप सुनाइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है, आपके शहर का मौसम कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। गज़ल उसने छेड़ी का आगाज़ उसके नाम नामी से हो चुका है जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहिगुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी आन किसी भी तकलीफ़ किसी भी परेशानी किसी भी मुसीबत किसी भी बीमारी में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं और बेशक वो हम सबका रब है, हम सबका रब्बुल आलमी है।

गजल उसने छेड़ी का आगाज करते हैं, लेकिन आज हम एक बात बताना चाहते हैं आपसे और चाहते हैं कि आप, हम अपनी बात आपसे ही शेयर करते हैं, जाहिर है किससे करेंगे, आप हमारी फैमिली हैं, हमारी जो लिसनर्स और कॉलर्स और हमारे जो व्यूअर्स हैं, इन्हीं की वजह से तो ये महफिल सजा करती है। आज 30 सितंबर है और 30 सितंबर का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कि आज हमारे बहुत ही खूबसूरत से शहजादे अशमल की सालगिरह है। और मैं आज की शाम और इस आज का सारा प्रोग्राम उनके नाम कर रहा हूँ। अशमल मियाँ आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं 30 सितंबर को, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने शहजादे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पेश करें। हम आज के प्रोग्राम में उनका तोहफा पेश करेंगे सालगिरह के पुरमसरत मौके पर। जो अहबाब हमारे हमराह तशरीफ ला चुके हैं उनके अस्माए ग्रामी मैं बता दूं, इसलिए कि आज की शाम अशमल के नाम है। जितने गीत बजेंगे, जितने लोग आएंगे, सब हमारे शहजादे के लिए होंगे जो आज अपनी सालगिरह मना रहा है। हर साल इनकी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जो मेहमान हमारी बर्ज में तशरीफ ला चुके हैं उनका जिक्र खैर कर दूं और फिर उसके बाद हम उस तोहफे का अदा करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे जो हम सालगिरह के पर मुसर्रत मौके पर अपने शहजादे के लिए लाए हैं। रियासत साहब हरिसफील से तशरीफ ला चुके हैं। वकार मियां वेकफील से हमारे हमराह मौजूद हैं। रियाज साहब तशरीफ लाए हैं ब्रेडफोर्ड की सचिन वादी से। सुमैरा बिटिया ब्रेडफोर्ड 3 से। भगत सिंह साहब लीड से। डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रेडफोर्ड की सचिन वादी से। हिमायूं परवेज साहब हमारे हमराह अमरोहा के मरदमखेज शहर से मौजूद हैं। मुझे कल से बहुत शदीद नज़ला हुआ है, फिक्र नहीं कीजिएगा, ये यहाँ की बात आम है। तशरीफ लाए हैं खारियाँ गुजरात पाकिस्तान से परदेसी मजीद। तशरीफ लाए हैं लैया पंजाब पाकिस्तान से नज़ीर अहमद साहब। तो दोस्तों ये हैं वो अहबाब जो हमारी आज की इस बज़्म का हिस्सा बन चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे शहजादे अशमल मियाँ की सालगिरह है और सालगिरह के पुरमसरत मौके पर हमेशा की तरह, हर साल की तरह, हम दिल की तमाम तर गहराइयों से उन्हें सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं और मग़फ़िरत की भी खुदावंद करीम से इल्तिजा करते हैं। सालगिरह सालगिरह है। यह हमारा शहजादा बहुत कम उम्र में इस जहान पानी से सबको सोगवार करके चला गया। आज भी जबकि 30 सितंबर और हमारे अशमल की सालगिरह है, तो मेरी निगाह पड़ी उनके जज्दे खाकी को जहां तदफीन हुई है, और वहां पर मैं देख रहा हूं कि एक रश है। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे हैं जो मेरा ख्याल उनके कुलीग हैं, उन्होंने कार्ड रखा है और सब के सब, मेरा ख्याल बिला मुबालगा 14-15 बच्चे हैं ये, और अपने दोस्त अशमल मियाँ को सालगिरह की मुबारकबाद देने सुए खमोशा में आए हैं, कब्रिस्तान में मौजूद हैं और नहायत अकीदत से सर झुकाए खड़े हैं, और ये इन्होंने एक कार्ड रखा। अब जो दूसरे कार्ड यहाँ लगे हैं वो भी मैं देखता हूँ और उनकी उन पे क्या तहरीर है ये भी देखता हूँ। ये देखिए, ये पहला कार्ड जो है ये उनके दोस्तों कुलीग्स क्लासमेट रूममेट और जिसे कहना चाहिए कि स्कूल में जो भी कह लीजिए आप, उनके स्कूल के ये साथी कार्ड रख गए हैं और कहते हैं अशमल वी मिस यू।
हम अब भी तुम्हारे घर जाते हैं इसी तरह जिस तरह तुम्हारे होते हुए जाते थे, ताकि तुम्हारे वालदैन की गमगुसारी हो सके। दूसरा कार्ड जो मैं ये देख रहा हूँ, ये उनके दादा जान का है और उसमें लिखा है, यार तुमने हमारा भी नहीं सोचा। बा कहते थे अपने दादा को ये, उन्होंने लिखा है कि यार तुमने हमारा भी नहीं सोचा। और ये अगला कार्ड किसका है, ये है उनके वालिद मोहतरम खुसरो साहब का। उन्होंने सिर्फ लिखा है कि सालगिरह के पुर मुसर्रत मौके पर ढेरों मुबारकबाद। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़रत फरमाए। और ये कार्ड जो है, ये उनकी वालदा मोहतरमा का है और इस पर क्या लिखा है देखूं मैं, जरा मैं तबा सालगिरह के पुरमसरत मौके पर दिल की गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद। मैं तबाह हो गई, मेरा सब कुछ लूट गया, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़रत फरमाए। ये उनकी चची का है, निगहत साहिबा का कार्ड। हमारा तो घर की रौनक चली गई। चचा बाबर कहते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया। अंश कहते हैं घर में आते ही मेरी निगाह अपने दोस्त पर पड़ती है, जो पड़ती रही हमेशा, लेकिन अब वो कोना खाली होता है जहाँ मेरा छोटा सा दोस्त हुआ करता था। साथ ही साथ एक बहुत खूबसूरत छोटा सा फूलों भरा कार्ड है, और ये कार्ड है उनकी प्यारी सी बहना मैना जैना का, जो उनके ज़माने में बहुत चहकती थी और पूरा घर उनकी चहकार से गूंजता था। इस पर लिखा है, अच्छू भैया सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। आप कब लौटोगे, मैं इंतजार कर रही हूं। और एक और छोटा सा कार्ड है, ये अदियान का है और इन्होंने सिर्फ लिखा है, अच्छू भाई सालगिरह के पुरमसरत मौके पर अशमर मियां आपको ढेरों मुबारकबाद कबूल हो, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़रत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपकी मुख्तलिफ जगह पे मौजूदगी बड़ी हैरान कुन है। आपके स्कूल के साथियों का कहना यह है कि उन्होंने आपको नमाज दौरान नमाज जुमा में देखा, लेकिन जब दो निगाह दोबारा फेरी सलाम फेरा तो आप वहां मौजूद नहीं थे। कहाँ कहाँ घूम रहे हो शहजादे। फिर कुछ लोग हरम गए थे, हरम में उन्होंने आपकी मौजूदगी को महसूस किया कि आप उनके नेक्स्ट हैं, लेकिन जब सलाम फेरा तो वहाँ भी आप मौजूद नहीं थे। कभी कभी मुझे अपने सिटिंग रूम में भी आपकी आमद का एहसास होता है। अल्लाह ताला आज का ये मौका, जबकि सालगिरह मना रहे हैं हमारे अशमल मियाँ, आइए हम सब लोग सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद इन्हें पेश करते हैं, ये कह के कि सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़रत फरमाए। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वी मिस यू, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन जन्ना। ठीक है, आप तो वहाँ के बुद्धबाश है, बाप की वहाँ जन्नतुल फिरदौस में, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस खूबसूरत
और प्यारे से शहजादे अशमल मियाँ के लिए सब मिल के दुआ करते हैं। और ये आप समझ लीजिए कि यह आप अशमल को सालगिरह का तोहफा दे रहे हैं। ठीक है, आइए हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अशमल मियाँ के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए और उनके वालिदैन को, उनके दादा को जिन्हें वो बा कहते थे, और उनकी प्यारी सी बोलती हुई बहना मैना जैना को जो अब बिल्कुल बात नहीं करती, सिर्फ ये पूछती है कि अच्छे भाई कब आएंगे। इन सब को अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फजल से सब्र जमील अता फरमाए। साथ ही साथ जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, ये तो जिक्र था हमारे शहजादे का, अशमल का। आज का गजल उसने छेड़ी, आज की शाम अशमल के नाम कर रहे हैं हम, गाहे बगाहे उनका जिक्र होता रहेगा हमारे, क्योंकि बहुत से सामीन और नाजरीन उनके लिए बे इंतहा दुआओं में शामिल रहे थे, और उन सबको भी उतना ही दुख है अशमल के बिछड़ जाने का जितना आपको और मुझको है। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र अता फरमाए। साथ ही साथ आज हमारे दिल्ली में मौजूद नफीस अहमद ख़ान साहब को इंसिडेंस है कि आज ही उनकी भी सालगिरह है। उनकी शरीक हयात उनके हमराह मौजूद हैं, तबस्सुम निगार, और कह रही हैं कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पर सलामत रखे। और आजकल हमारे उनकी तबीयत कुछ नासाज है, दुआ फरमाइए और अपने सुनने और देखने वालों से दुआ की दरख्वास्त कर दीजिए कि सालगिरह की तो ढेरों मुबारकबाद बजा हमने वसूल की। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला नफीस अहमद ख़ान साहब को सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। नफीस भाई, हमारी ढेरों दुआएं और हमारे सुनने वालों की ढेरों दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। सालगिरह की दिल की तमाम तर गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद। खुदा बंदे करीम ऐसी ढेरों सालगिरह आपको दिखाए। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद, क्योंकि आज की शाम अशमल के नाम है, मैंने बड़ी हिम्मत करके जो बातें की हैं इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, बहुत हिम्मत करके, अपने आप पे कंट्रोल करके जो मैंने बातें की हैं अपने शहजादे के लिए, बहुत हिम्मत की बात है। बहरहाल उसके लिए दिल में मेरे क्या जज्बात थे, क्या जज्बात हैं, और जब तक जिंदा हूँ वो जज्बात बाकी रहेंगे, ये गाने की शक्ल में इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद पेश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे मुल्तमिस हूँ, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला नफीस अहमद ख़ान साहब को सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए, इनकी जोड़ी को सलामत रखे, नजरे बद से बचाए, और अल्लाह ताला हमारे शहजादे अशमल को, सालगिरह का दिन है और इस पुरमसरत मौके पर आप सब सामीन और नाज़रीन से दरख्वास्त है कि उसे अपनी दुआए मग़फ़रत में याद रखिएगा, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। वैसे तो वो शहीद है और शहीद तो उसका तो जो मर्तबा और मकाम है उसे मैं लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हूँ। और चलते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानी। इसके बाद अशमल मियाँ, हाँ तुम्हारा तोहफा भेज रहा हूँ, हाँ हाँ तुम्हारे लिए। हमारे शहजादे से हमारी बातचीत होती रहती है। ठीक है ठीक है।

0: and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: तो ये तोहफा था खुल्द नशी अशमल मियाँ के लिए, जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी चची का बुरा हाल है, वो कहती है कि आई मिस यू अशमल, कौन है जो उन्हें मिस नहीं करता। साथ ही साथ उनकी प्यारी सी वो महना जो हमेशा चहकती रहती थी, आज सिर्फ उसने सलाम भेजा है कि अच्छू भाई के लिए आपने इस तरह से उन्हें याद किया है, मुझे बहुत याद आ रहे हैं। हम अर्शी आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारे शहजादे और इस नन्हे फरिश्ते के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफरत फरमाए। दोस्तों, आज की शाम अशमल के नाम है, सो उनका जिक्र खैर चलता रहेगा। अर्शी निगहत, अल्लाह आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। चलते हैं हम आपको लेकर ज़्यादा दूर नहीं, हर्रसील की हसीन फ़जाओं में, जहाँ रियासत साहब और उनके अहले खाना इस गीत को सुनने के मुंतज़िर हैं। इस वक्त हमारे मुअम्मर तरीन बुजुर्ग लिसनर अलहाज शबी अहमद नकवी साहब भी हमारे हमराह मौजूद हैं। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे और सब्र जमील अता फरमाए।
1: खुदा हाफिज़, कहाँ सो जाइए, आप अकेले मरी जाएंगे।
2: जी मैं अकेला मरी जाऊंगा।
1: क्यों? अरे बात सुनिए, आप अकेले यानी जूते खाने के लिए मैं अकेला हूँ और मरी घूमने के लिए आप अकेले हूँ।
2: मैं तो चला हट जहाँ से, दे रही मुझे।
1: अच्छा, यानी पहले हम भैया भैया हुआ करते थे, अब हम चलबे भी हो गए, हटबे भी हो गए।
3: तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कह रहा हूँ मेरा इंतजार कर रही होगी, देर हो रही है, मुझे बातें बना रहे खड़ा।
1: मेरा दिमाग खराब हो गया?
4: बदलो भाई,
1: आदमी किसी के काम आ जाए तो दो टके का रह जाता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। आज की शाम अशमल मियां के नाम है हमारे उस शहजादे के जो हमें बहुत जल्द छोड़कर चला गया। मैं अपने तमाम सुनने वालों से मुल्तमिस हूँ कि दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वकार मियां जो इस वक्त हमें वेकफील्ड में सुन रहे हैं तशरीफ लाए आगाज प्रोग्राम में ही, आज हमारा टेलीफोन, हालांकि ये नया नस्ब हुआ है, आप हम तक टेलीफोन के ज़रिए नहीं पहुंच पाएंगे। पेज पर तो हम आपसे बात कर लेंगे या फिर मुझे जो व्हाट्सएप पे पैगाम मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो गई है, देखिए क्या होता है, कब तक ये सही होती है, इसीलिए हम ऑन एयर कॉल्स भी आज नहीं ले पाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं वेकफील्ड, जहाँ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर वकार साहब, जो आज एडिनबरा की तैयारी कर रहे हैं। कल वो वेल्स गए थे, आज ये एडिनबरा जा रहे हैं। हम ढेरों दुआओं के साथ उन्हें रुखसत करेंगे, साथ ही साथ हम अपने तमाम सुनने वालों को एक बार फिर गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की शाम अशमल के नाम है हमारे उस शहजादे के जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, और ये कहते हुए ज़बान लड़खड़ाती है, मगर जहाँ है हमसे बहुत बेहतर जगह है। वकार मियां, हमारी ढेरों दुआएं आपके और आपके अहले खाना के साथ हैं। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी टू एडिनबरा स्कॉटलैंड, आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल कीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, आज का शाम अशमल के नाम, और हमारी बहुत ही खूबसूरत लिसनर और चची जान हैं ये अशमल की, निगहत बाबर एक गीत सुनना चाहती हैं जो हम उनकी जानिब से ज़रूर अपने तमाम सुनने वालों तक पहुंचाएंगे। बस ये कह सकते हैं कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, और यही याद हमारी ज़िंदगी का हसीन और क़ीमती सरमाया हुआ करती है, जीने के लिए एक सबब बनती है, बहाना बनती है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में हमें राज़ी रहना है। वो बेहतर समझता है कि किसकी किसको कहाँ से किस वक्त ऊपर ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको सब जमील अता फरमाए। निगर, इसके बाद हमारा सेगमेंट होता है एक शायर एक गीत दो फनकार, उसके फौरन बाद हम आपका तोहफा ज़रूर पेश करेंगे। और हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे, खुर्रम सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए हैं, और हम आपको भी दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे शहजादे अशमल के लिए दुआए मग़फ़रत फरमाई है। ताजदार अनस साहब भी अमरोहा से मौजूद हैं, उन्होंने भी दुआए मग़फ़रत फरमाई है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और तमाम वो अहबाब जो मुझे ऑन एयर सुन रहे हैं और दुआ के लिए उन्होंने हाथ उठाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसका अजर अता फरमाए।
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective.

0: It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
4: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र दी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मूत्र दी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत्र दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत्र दी ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मूत्र दी।
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
9: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गज़ल उसने छेड़ी। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम गज़ल उसने छेड़ी एक खूबसूरत शहजादे और फरिश्ते के नाम है। आज की शाम अशमल के नाम। अब हम आपका पसंदीदा सेगमेंट लेकर हाजिर हैं, एक शायर, एक गीत, दो फनकार। आज का जो गीत है, इसे मुंतखब किया है ब्रैडफोर्ड 18 से हमारी प्यारी सी बहना शहनाज ने। 1980 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था सिलसिला, और इसमें अमिताभ, रेखा, संजीव कुमार, जया बच्चन, बड़ी कास्ट की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म की खसूसियत एक ये थी कि एक गीत इसमें ऐसा था जिसे इस सदी के सबसे बड़े नामवर हीरो ने गाकर उस गीत को एक नई शान दी थी और गीत भी बहुत खूबसूरती से गाया गया था। इसे तहरीर किया था जावेद साहब ने। जावेद अख्तर साहब के बेइंतहा गीत मकबूल हुए हैं, आप सब जानते हैं बहुत सी फिल्मों के, लेकिन ये गीत कुछ अछूता निराला और सबसे हटकर था। ये भी याद रहे कि जावेद अख्तर जानिसार अख्तर साहब के साहबजादे हैं और शोले जैसी फिल्म भी उसमें इनका बड़ा हाथ था। जावेद सलीम ये बहुत बड़ा नाम था। बहरहाल हम जिक्र कर रहे हैं 1980 की फिल्म सिलसिला का। एक गीत जावेद अख्तर ने लिखा और उस गीत ने मकबूलियत और शोहरत की तमाम बुलंदियां तय की और वो गीत उस वक्त के और आज के महान फनकार अमिताभ बच्चन की आवाज में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी मौसीकी तरतीब दी थी हमारे बहुत ज्यादा मारूफ मौसीकार नहीं है शिव हरी ने। उसे दो आवाजों में रिकॉर्ड किया गया, पहली आवाज अमिताभ बच्चन की थी। सो आज की एक शायर एक गीत दो फनकार में आज की फिल्म है सिलसिला 1980 की। ये फिल्म गीत के बोल तहरीर किए हैं जावेद अख्तर ने, मौसीकी से शिव हरी ने सवारा है और आवाज का जादू जगा रहे हैं अमिताभ बच्चन, पहली आवाज।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो फनकार। आज का गीत मुंतखब किया है हमारी प्यारी सी बहना ब्रेडफोर्ड 18 से शहनाज ने। अब वक्त हुआ है दूसरी खूबसूरत आवाज सुनने का और ये आवाज है सुरों की देवी लता मंगेशकर की। जैसा कि आपको याद है फिल्म का नाम तो अब आपको याद रह गई 1980 की फिल्म सिलसिला, गीत के बोल जावेद अख्तर के और मौसीकी शिव हरी की। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की सहर अंगेज आवाज में यही खूबसूरत गीत।

दोस्तों, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। परदेसी मजी साहब, हमने सबको दावत आम दी हुई है, लेकिन गीत का दो आवाजों में होना जरूरी है। अभी आप सुन रहे थे हमारा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर थे जावेद अख्तर, मौसीकार शिव हरी, और दो आवाजें जो आपने सुनी अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की। आज का गीत मुंतखब किया था हमारी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत लिसनर, प्यारी सी बहना शहनाज ने ब्रेडफोर्ड 18 से। अब हम आपको लिए चल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं, अमरोहा, जहां क्योंकि आज की शाम अशमल के नाम है। अशमल की चची जान कहती हैं कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूं। आप क्या, हम भी बहुत मिस करते हैं। कहती हैं कि तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। ये कैसी धुंध में हम तुम सफरे आगाज कर बैठे, तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। हर एक तदबीर अपनी रायगा ठहरी मोहब्बत में, कभी भी ख्वाब को ताबीर का रास्ता नहीं मिलता। भला उसके दुखों की रात का मदावा है, भला उसके दुखों की रात का मदावा है, वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है, वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। और जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। मुसाफत में दुआए अब्र उनका साथ देती है, जिन्हें सहरा के दामन में कोई दरिया नहीं मिलता। जहां जुल्मत रगों में अपने पंजे गाड़ देती है, तो फिर तारीक रास्ते पर दिया जलता नहीं मिलता। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है, वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। और आइए हम अशमल मियाँ की रूह के लिए, इसाले सवाब के लिए आपसे मुल्तमिस हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी चची जान निघत और चचा बाबर और छोटे चचा अंस को भी सब्र जमील अता फरमाए। कहती हैं अभी तक यकीन नहीं आता, हमें भी नहीं आता, किसी को बताइएगा मत। लेकिन इससे पहले कि हम आपका तोहफा पेश करें, मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा कराची पाकिस्तान से डॉक्टर अहमद जकी साहब, अपनी जीवन साथी डॉक्टर आफरीन के हमरा हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं। और आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है और एक गीत खूबसूरत सा सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जो इंशाल्लाह हम कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद आपकी नज़र करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी आमद दोनों की हमारे प्रोग्राम के लिए बाइस इज्जत और तौकीर है। आपने तशरीफ़ लाकर गज़ल उसने शेरी के मेयार को बुलंद कर दिया। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और नज़रे बद से बचाए। तो आइए निगर, आपका तोहफा अशमल मियाँ के नाम।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, आज की शाम हमारे अशमल शहजादे के नाम है। और अब हम बज़्म में शामिल कर रहे हैं मोहम्मद अय्यूब चौहान को, जो तशरीफ लाते हैं क्योंकि अभी हमारी ऑनलाइन सर्विस फिल वक्त बंद है। जैसे ही वो ऑन होगी हम ऑन एयर अपने तमाम सुनने वालों को बता देंगे। वो आए थे, अशार का तोहफा भी लाए थे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नई टेलीफोन लाइन नस्ब हो रही है सो अभी फिलहाल वो सहूलत मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ज़रूर ऐसा होगा। लेकिन अभी हम आपको ये खुशखबरी सुना दें कि हमारा ये कदीम तरीन नौजवान लिसनर, जिसे आप मोहम्मद अय्यूब चौहान के नाम से जानते हैं और ओल्डहम से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर में इजाफा करते हैं, आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं और मुझसे वादा किया है कि रिफत भाई केक आप तक पहुंच जाएगा। मेरे मुंह में अभी इससे पानी आ रहा है कि इतना शानदार केक, क्योंकि बड़े अहले ज़ौक हैं तो ज़रूर केक भी बहुत ही ख़ानदानी किस्म का होगा, मज़ा आ जाएगा। बहरहाल अय्यूब चौहान साहब, हम अपनी जानिब से और अपने तमाम सुनने और देखने वालों की जानिब से आपको सालगिरह के मुसर्रत मौके पर दिल की तमाम तर गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कौन सी सालगिरह मना रहे हैं, यहाँ तो फिर खामोश हो जाएंगे आप, है ना। इसीलिए बस इतना कह दूं कि ये हमारे कदीम तरीन नौजवान लिसनर्स में से हैं अय्यूब चौहान साहब। अल्लाह ताला ऐसी ढेरों सालगिरह आपका मुकद्दर हों, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको केक मुझ तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जीते रहिए। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे अय्यूब चौहान साहब की सालगिरह है। और तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के दिन हों 50,000। सालगिरह के पुरमसरत मौके पर तुमने अपने लिए ये गीत पसंद किया जो हमारे भी दिल के बहुत करीब है, सो लेकर हाजिर हूँ, आमद का बहुत शुक्रिया।

दोस्तों मुझे एक गीत तहरीर किया है खारियां गुजरात पाकिस्तान से परदेसी मजी साहब ने, जो मुझे मिल नहीं पा रहा क्योंकि आप बोल जो लिखते हैं वो जरा मुश्किल होता है समझना, तो दोबारा मुझे बोल लिखिए और ठीक से लिखिए कि मैं गीत तलाश कर सकूं। अब हजार ऐसा लग रहा है बाजार दी और हजार दी कुछ ऐसा लगता है, अकरम राही साहब के तो गीत का पहला बोल लिख दूं तो वो फौरन आ जाएंगे, तशरीफ ले आते हैं वो। ठीक है, आप मुझे दोबारा तहरीर कीजिए। और अब हम चल रहे हैं दिल्ली, जहां मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना तबस्सुम निगार, और आज बेइंतहा खुश हैं, थोड़ी सी परेशान भी नजर आ रही हैं, उनके चेहरे पर मैं परेशानी देख सकता हूं। आज उनके जीवन साथी नफीस अहमद खान साहब अपनी सालगिरह मना रहे हैं, चेहरे पर खुशी के आसार इसी बात के हैं कि उनके जीवन साथी की सालगिरह है, और थोड़ी सी परेशानी भी मैं चेहरे पर देख रहा हूँ वो इस बात की है कि आजकल नफीस अहमद खान साहब की तबीयत कुछ नासाज है। तो मैं आपको नफीस भाई ढेरों मुबारकबाद सालगिरह की पेश करता हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी प्यारी सी बहना तबस्सुम निगार की जोड़ी को सलामत रखे, नजरबंद से बचाए, और तबस्सुम बीमारी जान का सदका होती है। तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह हमारी दुआओं से और हमारे लाखों सुनने और देखने वालों की दुआओं से अल्लाह ताला हमारे नफीस अहमद खान साहब को सेहत कामला सेहत आजला नसीब फरमाएगा। बस दुआ करो यहाँ से, अल्लाह ताला सुनता है, कबूल करता है और लब्बैक कहता है। अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, नजरबंद से बचाए, अपने अमान में रखे। तुम्हारे लिए मैंने ये गीत इस हसीन जोड़ी के लिए मुंतखब किया है, टचवुड, अल्लाह नजरबंद से बचाए।

0: Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
3: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
6: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
8: कमर्शियल से पहले आप सुन रहे थे हमारी प्यारी सी बहना तबस्सुम निगार, जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और आज उनके जीवन साथी नफीस अहमद खान साहब की सालगिरह है। उनका तोहफा हमने उनकी नज़र किया। मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों से एक दरख्वास्त और भी करना चाहता हूं। मैं करता रहता हूं इसलिए कि मुझे पता है कि मेरी आवाज़ पर मेरे सुनने और देखने वाले लब्बैक कहते हैं, और वो दुआ है कि खुद तबस्सुम निगाह साहबा की तबीयत आजकल नासाज है, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। अभी जो मेहमान तशरीफ लाए उनका जिक्र हो जाए। कराची पाकिस्तान से जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक आयत अमरीन जहरा काजमी हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं, और आप तमाम अदब के शराइयों और शेर के मतवालों के लिए भी एक खूबसूरत तोहफा लाए हैं जो हम आपकी नज़र करेंगे। तशरीफ लाए हैं ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से हमारे बेइंतहा खूबसूरत अहले ज़ौक लिसनर और खान साहब मेहंदी हसन खान साहब के शैदाई जनाब अजहर साहब, और उन्होंने और जनाब रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने आप तमाम अहबाब की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये आज की शाम अशमल के नाम है, उन्हें अपनी दुआ में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और अब चलते हैं हम उस गीत की जानिब। परदेसी मजीद साहब, असल में उन्हें ये पता नहीं कि मैं जाहिल आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं उर्दू पढ़ नहीं पाता। आप जो उर्दू लिखते हैं वो बड़ी आला स्टाइल की और बड़ी ऊंची उर्दू है जो मेरे सर पे से बाज़ औक़ात गुजर जाती है, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपने आप को इस काबिल बना लूँ कि मैं आप जैसे अच्छे लिखने वालों की बात को समझ सकूँ। बहरहाल हम आपके लिखे हुए पैगाम को समझ ना पाए, मगर आपके लिए हमने ये खूबसूरत गीत मुंतखब किया है आपके महबूब फनकार अकरम राही की आवाज़ में। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी में, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम अजहर साहब और खां साहब की याद ताज़ा करना चाहते हैं। कहते हैं मैं उनके लिए दुआगो हूं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को, हम भी दुआगो हैं, बड़े नफीस आदमी, नफीस शख्सियत के मालिक, मुनकसरुल मिजाज और लहन दाऊदी ऊपर वाले ने उन्हें अता फरमाया था। आपका तोहफा आपकी नजर करेंगे। यार आप कितने गीत बदलते हैं यार, अभी मैंने एक सेकंड रुकिए मैं लगा देता हूं ये वाला, एक गीत लिखा कीजिए। मेरे पास फोन पे भी आते हैं, पेज पे भी आते हैं और सबकी ख्वाहिश का एहतराम करना होता है। आज तो मैं लगा रहा हूं आपकी पसंद का गीत, क्योंकि मैं गीत क्यों करके रखता हूं ना कि इसके बाद इनका नगमा है, इसके बाद मुझे यहां पर टिक करना होता है। 30 सेकंड की इजाजत दीजिए, आपकी पसंद का गीत लगाता हूं। मैंने दूसरा गीत क्यों किया हुआ था।

आपका तोहफा मैंने ढूंढ निकाला है, अभी आपकी नजर करने जा रहा हूँ। और आप 5 क्लास तक गए? 3 दिन गए। अच्छा, मैं चौथी के बाद नहीं गया। चौथी क्लास पढ़ी मैंने और उसमें 2 दिन गया, उसके बाद उर्दू बस ऐसे ही आ गई थोड़ी सी। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए और सोच समझ के एक गीत का फैसला किया कीजिए।

दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं बेडफोर्ड में मौजूद अजहर साहब के तोहफे की जानिब।

अदर हमने एक बेइंतहा खूबसूरत गीत मुंतखब किया है जो बहुत दिनों से लोगों ने खान साहब की आवाज में सुना नहीं होगा। इस खूबसूरत शेर के साथ, क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे, आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए। आमद का अजहर बेइंतहा शुक्रिया।

बताइए दोस्तों, आज की इस हसीन शाम में जो हमारे शहजादे अशमल के नाम है, अब हम आपको लिए चलते हैं कराची पाकिस्तान, जहां मौजूद है एक हसीन जोड़ी रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं अपने उन तमाम अहबाब का जिन्होंने अशमल मियां के लिए मगफिरत की दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। साथ ही साथ जनाब अयूब चौहान साहब, आपको हमारे मोम्मर तरीन बुजुर्ग लिसनर अलहाज शबी अहमद नकवी साहब ने सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद पेश की है, और मैं शकील साहब को आपका मैं सलाम भी पहुंचा रहा हूं, परदेसी मजीद साहब, और दावत भी देता हूं अगर वो तशरीफ़ लाना चाहें तो अब वो तशरीफ़ ला सकते हैं। अयूब चौहान साहब, आपके लिए भी दावत मौजूद है। अब तो हम चल रहे हैं कराची पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे ये हसीन जोड़ी जनाबे रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत उमीद फाजली का कलाम अदब के शदाइयों और शेर के मतवालों के नाम भेजा है कि जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, परछाई जिंदा रह गई इंसान मर गया। जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, परछाई जिंदा रह गई इंसान मर गया। क्या खूबसूरत इंतखाब है साहब, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बर्बादियां तो मेरा मुकद्दर ही थी मगर, बर्बादियां तो मेरा मुकद्दर ही थी मगर, चेहरों से दोस्तों के मुलम्मा उतर गया। बर्बादियां तो मेरा मुकद्दर ही थी मगर, चेहरों से दोस्तों के मुलम्मा उतर गया। ए दोपहर की धूप बता क्या जवाब दूं, ए दोपहर की धूप बता क्या जवाब दूं, दीवार पूछती है कि साया किधर गया। ए दोपहर की धूप बता क्या जवाब दूं, दीवार पूछती है कि साया किधर गया। और इस शहर में फराश तलब है हर एक राह, वो खुश नसीब था जो सलीके से मर गया। क्या बात है, वाह वाह वाह वाह। इस शहर में फराश तलब है हर एक राह, वो खुश नसीब था जो सलीके से मर गया। नई इस्तिलाह है आप, क्या क्या क्या क्या किया ना उसको ज़ोमे मसीहाई था उम्मीद, क्या क्या ना उसको ज़ोमे मसीहाई था उम्मीद, हमने दिखाए जख्म तो चेहरा उतर गया। वाह वाह वाह वाह, क्या मख्ता है। क्या क्या ना उसको ज़ोमे मसीहाई था उम्मीद, हमने दिखाए जख्म तो चेहरा उतर गया। बहुत खूबसूरत इंतखाब हजरत उम्मीद फाजली के कलाम से। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अब मैं वो गीत पेश कर रहा हूँ जो हमारी इस हसीन जोड़ी ने सुनने का अंदिया दिया है। हाजिर है आपकी पसंद का गीत, कबूल कीजिए। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नजरे बद से बचाए।

दोस्तों वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। ये पसंद थी हमारे मोहतरम रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा की। इस दुआ के साथ के अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे। कमर्शियल के फौरन बाद अयूब चौहान साहब तशरीफ ला चुके हैं और पहले कॉलर होंगे। ये जो नए निज़ाम की तनसीब हुई है और आपको पता है कि वो हमेशा बेइंतहा खूबसूरत इंतखाब लेकर आते हैं, और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे हमारी काबिल इज्जत एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा, जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाती हैं। अब लंच ब्रेक पर हैं डॉक्टर साहब, आपका तोहफा इंशाल्लाह तैयार है। चंद बातें अयूब चौहान से और उसके फौरन बाद आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे।

इंतहा शुक्र गुजार हूँ अपने उन तमाम अहबाब का कि जिन्होंने मेरे शहजादे अशमल के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए इस दुआ के साथ, और कि आप उसे आइंदा भी अपनी दुआओं में याद रखें। रिजवान रिजवी साहब, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। उससे हमारा बड़ा गम हल्का हुआ कि हमारे इतने चाहने वाले और हमारे शहजादे के इतने चाहने वाले मौजूद हैं। कटी गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए मेरे भी दिन गुजर गए, वो भी गुबारे खाक था हम भी गुबारे खाक थे, वो भी कहीं बिखर गया हम भी कहीं बिखर गए। दोस्तों, जो आया है उसे जाना ज़रूर है, और कब जाना है किस वक्त जाना है इसके लिए फैसला करने वाला ऊपर मौजूद है। लोग हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं, इसी तरह से एक हसीन याद ता हयात हमारे हमरा इस नौजवान शहजादे अशमल की रहेगी। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, और लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। बस दुआ ही कर सकते हैं, और ये दुआएं असर करती हैं। जाते जाते मैं अपनी पसंद का एक गीत अपने शहजादे के नाम कर रहा हूँ, जो कैफियत हमारे दिल पर गुजर रही है उसे लफ्ज़ों में पिरोना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एहसास हो सकता है कि किस कदर बड़े कर्ब से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। आखिरी तोहफा हम अपने मोहम्मद तरीन बुजुर्ग लिसनर अलहाज शबी अहमद नकवी साहब और अहल खाना की जानिब से नज़र कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है रिजवान साहब, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो आया है उसे जाना है। कुछ लोग जो उसके ज़्यादा करीब होते हैं उन्हें जल्दी बुला लेता है, और कुछ अपने बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। अब मैं गज़ल उसने छेड़ी और आज की शाम अशमल के नाम से इजाज़त चाहता हूँ। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को अब इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सब का अल्लाह हाफिज़ नासिर, शब खैर फ़ी अमानिल्लाह। और आखिरी तोहफ़ा हमारे शहजादे और अहल खाना के हुजूर, जो सोगवार हैं, अभी तक सब्र नहीं आ रहा।

जाते जाते मैं ये पैगाम ज़रूर बता दूं आपको, हमारे मोहम्मद तरीन बुजुर्ग लिस्नर अलहाज शबी अहमद नकवी साहब, जो दादा भी हैं अशमल के, उन्होंने तमाम सामीन और नाजरीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने अशमल मियाँ के लिए दुआए मगफरत की। कहते हैं अल्लाह ताला आपको उसका अज्र अता फरमाए। मेरा फर्ज था कि मैं इस पैगाम को आप तक पहुंचा दूं, वरना मैं प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद कभी आपसे मुखातिब नहीं होता। आपका पैगाम हमने तमाम उन अहबाब तक पहुंचा दिया है जिनके हाथ उठे थे दुआओं के लिए, मगफरत के लिए, जनाब अशमल मियाँ के। अल्लाह आपको सेहत दे, सलामत रखे, और हमारे सर पर आपका साया सलामत रखे। शब बख़ैर।

0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أكبر. أشهد أن لا

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं

0: कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
3: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए,
3: 07548419678।
2: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं Hickam.
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 124 लेन ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह

0: किसी भी मौके के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है।
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी।
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, टी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए।

0: रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

आंखों में गुनचाहाए नवाजिश निचोड़ कर, आंखों में गुनचाहाए नवाजिश निचोड़ कर, मेरे दिले शिकस्ता को नरमी से जोड़कर, होंठों पे नीम मोजे तबस्सुम को तोड़कर, मेरी तरफ खफीफ सा गर्दन को मोड़कर, कल सुबह रास्ते में सुहानी हया के साथ उसने मुझे सलाम किया कि सदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशियात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर लोकली ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में आप हमें DAB प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हो, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं और आपकी सिर्फ एक क्लिक के मुंतजिर हैं। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर। और साथियों, अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन नाज़िर हैं, और अपने सभी सुनने वालों को अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस परा आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये नशियात सुन रहे होंगे, हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे, अल्लाह के फजल व करम से आप बाखरियत होंगे। और हमारी बहुत सी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं कि आप जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो सुनते रहें। आजिए सामिन, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके लिए हम खूबसूरत गीत पेश करते हैं, कुछ आपकी पसंद के होते हैं, कुछ हमारी पसंद के होते हैं। और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप सुनने वालों के लिए हम लाइव कॉल्स खोलते हैं, जिसमें आप टिकटॉक के जरिए भी हमारी इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप स्टूडियो के नंबर पर कॉल करना चाहें जो कि है 01274306677, उसके जरिए से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी, हमारे साथी ज्वेलर शॉप से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको खुश आमदेद कहते हैं। अलान, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम। नासिर खान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। जितने भी इस वक्त सफदर हमदानी साहब मोहतरम की प्लास, सबसे पहले आप तशरीफ लाए, आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद। महमूद कश्मीरी, वेलकम, खुश आमदेद हमारे पुराने दोस्त। और जितने भी हमारे साथी इस वक्त आ रहे हैं, आप सभी को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, अगर कॉल मिलाना चाहें हमसे इस वक्त बराह रास्त आप बात भी कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677। और हमारा व्हाट्सएप भी आप नोट कर सकते हैं जो कि है 00447-800-599-563, दैट्स 00447-800-599-563। आइएगा और हमारी आज की इस महफिल में शिरकत कीजिएगा, आपसे बात करके हमेशा दिली खुशी होती है, और ये नशियात हमेशा आपके लिए हम लेके आते हैं। और इन नशियात का लुत्फ तब आता है जब आप सुनने वाले हमारा साथ निभाते हैं, साथ देते हैं, कॉल्स करते हैं और लाइव कॉल्स में भी आप तशरीफ लाते हैं। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं एक खूबसूरत गीत से, और आपको बताते चलें कि कोई भी गीत आपकी पसंद हो तो आप हमें फरमाइश कर सकते हैं, आपके लिए हम जरूर पेश करेंगे। लेकिन एक बात है, जी हाँ, कहते हैं ना कि दो बातें और उसमें से फिर एक बात है, वो बात दरअसल ये है कि टिकटॉक पे आपके लिए हम मौसीकी पेश नहीं कर पाते, तो आपसे इल्तमास यही है कि अगर आप कोई गीत सुनना चाहें फिर आप हमारी वेबसाइट जरूर नोट कर लीजिएगा, bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट है, उस पर आप तशरीफ ले आइएगा। आप हमें टिकटॉक पे हमसे मुखातिब रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस प्रोग्राम का पूरा कंटेंट सुनना है, लुत्फंदोज होना है उससे, तो फिर आप यूं कीजिएगा कि हमारी वेबसाइट आप आ जाइए www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, आप वहां पे आइएगा, और ताकि आपके लिए हम खूबसूरत जो मौसीकी पेश करेंगे वो भी आप सुन सकें।
वादा तो कर गए थे कि आएंगे दिन ढले, वादा तो कर गए थे कि आएंगे दिन ढले, सूरज खुदा के वास्ते रहना परे परे। आइए एक खूबसूरत गीत से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और गीत है आप सभी सुनने वालों के जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं।

शायरी थी अनिल पांडे की, सिंगर थे सोनू निगम और अलका याग्निक। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम, जो कि जिंदगी है। और मौसीकी थी करण जौहर की। और सामिन, अगर आज के इस प्रोग्राम में कोई गीत सुनना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आपके लिए हाजिर है 01274306677। ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274। स्टूडियो का नंबर है 306677। और अब एक खूबसूरत गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम, आवाज है इस बार लता की। हसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस, हसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस, हर बात का इजहार जरूरी नहीं लब से।

0: और समीन, अभी लता की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। इसकी शायरी थी जनाबे गुलजार की, और गुलजार आप जानते हैं कि गुलजार का ताल्लुक हमारे जेलम शहर से है। जेलम के साथ आगे एक छोटा कस्बा है दीना, वहाँ से इनका ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कि उस एरिए से दो बड़े शायर आए हैं, एक गुलजार, एक सैयद ज़मीर जाफरी, जिन्होंने इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ किया था। तो इस शहर को बड़ी एक तरह से अहमियत हासिल है कि गुलजार जैसा अजीम शायर भी इसी दीना से, वो पार्टीशन के वक्त गालबन गए होंगे और जाके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने राज किया। इतने खूबसूरत गीत लिखे कि बल्ले बल्ले ही होगी उनकी। और गुलजार का नाम है दीना से मुतल्लिक, और अताउल्लाह कासमी ने एक खूबसूरत बात कही थी दीना से मुतल्लिक के, ये जीना क्या जीना है, ये जीना क्या जीना है, जिल्म से आगे दीना है। बताइएगा इस वक्त टिक टाक पे दीना से हमारे साथ कोई है? जी हाँ, जी टी रोड का एक खूबसूरत छोटा सा शहर आप कह लीजिए जिल्म, अगर पिंडी से रवाद से आप आ रहे हैं, जिल्म जा रहे हैं, तो पहले दीना आता है और फिर जिल्म आता है। तो अताउल्लाह कासमी ने उसका मजाक भी बनाया था कि ये जीना क्या जीना है, जिल्म से आगे दीना है। और समीन, अब वक्त अगली ब्रेक बहुत नज़दीक है। सोच रहा हूँ कि अगर अगला गीत हमने पेश कर दिया तो फिर गीत अधूरा रह जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हम कोई भी गीत अधूरा पेश करें, क्योंकि आप सुनने वालों के फेवरेट गीत चल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी गीत आप पूरा ना सुन पाएं और आपको उसका लुत्फ ना आए, तो इसलिए हम कोई भी गीत अधूरा नहीं पेश करेंगे। शाजिया जज, बेहद शुक्रिया आपका। बिल्कुल, BK786 आपने कहा कि गुलजार साहब मैरिड विद राखी, ऐसे ही होगा। बहुत बड़े शायर और बेशुमार इनके खूबसूरत गीत जो कि लता ने गा के अमर कर दिए। बहाल हिजरा बेचारा दिल है, वो भी इन्हीं का गीत है ना, जेहाल मस्की, खूबसूरत गीत है। उम्मीद करते हैं कि वो भी आपने सुना होगा। शायरीन मुनव्वर, आपने कहा कि आप मीरपुर से ब्रेडफोर्ड में रहते हुए क्या हमें पूछने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से? ब्रेडफोर्ड में माशाल्लाह जो हमारी मेजॉरिटी है, हमारी जो समझ लीजिए कि अगर 1.5 लाख की यहाँ पे आबादी है, तो यूँ कह लीजिए कि उसका 80% कमोबेश जो हमारे अपना मीरपुर है उससे है। meerpur.com। और सामीन, अब थोड़ी देर में हम चलते हैं ब्रेक की जानब, और आपसे इल्तमास है कि अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677 ब्रेडफोर्ड, एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677, और हमारा व्हाट्सएप भी नोट कर लीजिए उन सुनने वालों के लिए जो हमें यूके के कहीं बाहर सुन रहे हूँ या कॉल करना चाहें, तो आप बिल्कुल मुफ्त में हमें व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00447, जी हाँ 00447-800-599-563, दैट्स 00447-800-599-563। चलते हैं ब्रेक की जानिब।
1: DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627222, 9627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद। मुमताज बेगम आपने हमें ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया। हाजी एजाज साहब आपने हमें ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया आपका। माहिर बेहद शुक्रिया आपका। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम फिर बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। नहीं मिलते जो तुम हमसे, नहीं मिलते जो तुम मुझसे, तो सब हमदर्द हैं मेरे, जमाना मुझसे जल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। जमाने भर के झगड़े घर के किस्से काम की बातें, जमाने भर के झगड़े घर के किस्से काम की बातें, बला हर एक टल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ।

और सामी ने टिकटॉक पे हमें ज्वाइन किया है सुंदर साहब ने, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद वेलकम। जी हाँ, आप हमारी नशात का तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से हिस्सा हैं। बहुत खुशी होती है जब आप तशरीफ़ लाती हैं और हमारी नशात की हौसला अफजाई करती हैं। बेहद शुक्रिया आपका। और अगला गीत आप ही के नाम करेंगे। अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले गुलजार की। जी हम बहुत बड़े फिल्मी शायर, लाजवाब सदाबहार गीत लिखे अपने कलम से, और फिर लता की आवाज़ जब उन गीतों को नसीब हुई तो वो गीत कहाँ से कहाँ पहुँचे। उन्हीं गीतों में से एक गीत है, 90s का एक खूबसूरत गीत, फिल्म का नाम है गुलामी, शब्बीर कुमार और लता की आवाज़ है, शायरी है गुलजार की, जेहाले मस्की, खूबसूरत गीत आप खूबसूरत सुनने वालों के नाम।

और सामिन, अब हमने एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनने वालों के लिए क्यों किया है। मोमन आवान, बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और ये गीत, इसकी थोड़ी सी अगर आपको हिस्ट्री बताऊं, आपको इस गीत का मज़ा सुनने का दोबाला हो जाएगा, आप इसे मज़ीद पसंद करेंगे। इस गीत की ये खूबी है कि इसके जो शायर हैं उन्होंने इसकी मौसीकी भी दी है और उन्होंने इसे कंपोज किया है, इसकी तर्ज भी बनाई है। और वो शायर हैं कि बसारत से महरूम, लेकिन देखिए कि अल्लाह पाक ने अगर उन्हें बसारत से महरूम रखा तो उन्हें कितनी बड़ी क्वालिटी दी कि शायरी भी करते थे और मौसीकी भी उन्होंने तरतीब दी इस गीत की। और सबसे बढ़ के कि कोई नई चीज़ मुतारफ़ करवाना, नई आवाज़ मुतारफ़ कराना, कुछ दूसरों से हट के काम करना, इस शख्सियत का तो राय इम्तियाज था कि जब एक किसी एक बड़े सिंगर का जब एक दौर चल रहा होता है तो उस दौर में किसी छोटे सिंगर को आगे लाना जुए शीर लाने के मुतरादफ होता है। उसी तरह के जब लता का ज़ाहिरा पिछली सदी में आप कह लें कि 60-70-80 साल तक लता की आवाज़ गूंजती रही, तो उसमें एक नई आवाज़ को मुतारफ़ करवा के एक ऐसा गीत लिखा, उसकी ऐसी मौसीकी दी कि उसे अमर कर दिया। और गीत के बोल और फिल्म का नाम भी एक ही है, यकीनन आप समझ गए। फिल्म का नाम है अखियों की झरोकों से, शायरी और मौसीकी है रविंद्रनाथ जैन की। आप सभी सुनने वालों के नाम, और अगर आप गीत का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के ज़रिए से सुनिएगा, क्योंकि हम टिकटॉक पे गीत आपके लिए पेश नहीं कर पाते। अखियों के झरोकों से, क्या ही खूबसूरत गीत है। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आप सभी सुनने वालों को पसंद आएगा।

0: रजिया साहब ने इस वक्त टिकटॉक पे भी दोस्त हमें देख रहे हैं, और अब थोड़ी देर में हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होगी आप सुनने वालों से मुलाकात। आप कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677, और हमारा व्हाट्सएप है 00447 800 599 563। आप इसके जरिए आज के इस महफिल में शरीक हो सकते हैं, और टिकटॉक के जरिए भी। अब चलते हैं ब्रेक पे।
1: AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: और जी हाँ, इस खूबसूरत गीत के साथ ही हम आज के रंगे महफिल के दूसरे हिस्से में हम पहुंच चुके और आप सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं हम। गीत खूबसूरत था कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मुझे किसी का वो शेर याद आ जाता है कि हमारी राह में गहरा अना का खड्ड भी था, हमारी राह में गहरा अना का खड्ड भी था, उसी में गिरने का डर था हमें, उसी में गिरे। इंसानी ज़िंदगी यही है कि जहाँ से इंसान सबसे जहाँ से बच बचा के चलना चाहता है, गिरता वहीं है हमेशा। और ये गीत भी कुछ ऐसा ही था कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। खूबसूरत गीत था। और अब यूं है कि आपसे इल्तमास यही है कि आप टिकटॉक के व्हाट्सएप के ज़रिए तशरीफ़ ना लाइए, बल्कि आप टिकटॉक पे आप हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हम आपको लेके चलेंगे। इस वक्त अगर टिकटॉक पे आप हमें कॉल्स करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉल्स को लेना। तो आपसे यही इल्तमास है कि आप यूं कीजिए कि आप हमें टिकटॉक के पेज पे आइएगा, वहाँ से शेयर कीजिएगा। अननोन वाशा जी, बहुत शुक्रिया, आप अननोन नाम भी बता दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जो लाइव रेडियो पे आने वाले हैं, वो भी आप आ सकते हैं। प्रोग्राम का ये सिलसिला शुरू हो चुका है जिसमें लाइव कॉल्स होती हैं, शायरी आप सुना सकते हैं, गीत आप गा सकते हैं, कोई फरमाइश हो तो वो भी आप बता सकते हैं। टिकटॉक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप चाहें तो आप स्टूडियो में कॉल भी कर सकते हैं। खान बाबा, खान बाबा शायद आपको खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन नाम अगर लिख दे खान बाबा कैसी बात होगी। और यूं करते हैं कि अब एक खूबसूरत गीत या सुंदर, यूं करते हैं कि शायरी का आगाज़ हम महफिल का कर लेते हैं आपसे ही, और फिर ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। क्या ख्याल है शकील साहब? जी जी शकील साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए, शायद उनकी तबीयत अच्छी ना हो, तो यूं करते हैं कि हम आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब मैं आपकी माइक खोल रहा हूं और आपको सुनने वालों से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, खुश आमदेद।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूं और दुआ है कि सब खैरियत से हों।
0: आमीन।
1: और शकील को भाई की भी तबीयत ठीक हो। सभी को मेरा सलाम, तमाम सुनने वाले को।
0: जी जी वालेकुम,
1: यहाँ भी और जहाँ जहाँ सुन रहे हैं वहाँ भी।
0: टिकटॉक में दुनिया बहुत महदूद नहीं करती सादिया, बहुत
1: जी जी बिल्कुल, बहुत इजी रास्ते हो गए अब तो।
0: अब पूरी दुनिया एक गांव बन गया है और ये सारे शहर जो हैं, ये जो दुनिया के मुल्क हैं वो मोहल्ले बन गए और जो शहर हैं वो गलियां बन गई हैं, कुछ यूं ही लग रहा है। जी ऐसे ही
1: चले यार। सना जी को भी मेरा सलाम, और कहते हैं कि खुद फरेबी की हवा चली है,
0: खुदा जाने,
1: खुद फरेबी की हवा चली है, खुदा जाने किस तरफ दर्द की सदा चली है, खुदा जाने।
0: बहुत खूब, बहुत खूब
1: शुक्रिया। जो हकीकत थी, जो हकीकत थी वही पर्दाए वहम में है, किस लिए ऐसी अदा चली है, खुदा
0: जाने। बहुत खूब आबद काजमी भाई, वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं आपको, मोहतरम, सलामत रहें।
1: अपने ही साए से गुरेजा क्यों है, अपने ही साए से गुरेजा क्यों है, किसकी जाने ये अना चली है, खुदा जाने।
0: बहुत खूब, बहुत खूब
1: शुक्रिया। जो राज़े दिल था वो राज़े दिल ही ना रहा, ये कौन बज़म में होकर रुस्वा चली है, खुदा जाने।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने।
1: शुक्रिया। हम अहले दिल खामोश रह गए वरना, यहाँ कौन सी रस्म जफा चली है, खुदा जाने।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: न जाने किस लिए आशुफ्ता हाल फिरते हैं,
0: न जाने किस,
1: ये किस ख्याल की हवा चली है, खुदा जाने।
0: बहुत खूब।
1: हमें गुमा था के मंजिल करीब है लेकिन,
0: हमें गुमा था कि मंजिल करीब है लेकिन, वाह वाह क्या मिसरा।
1: जी जी, हमें गुमा था कि मंजिल करीब है लेकिन, ये रह गुजर भी देकर सजा चली है, खुदा जाने।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: और कहते हैं कि मोहब्बतों में अक्सर अनाएं जीत जाती हैं,
0: मोहब्बतों में अक्सर
1: अनाएं जीत जाती हैं, बेगुनाही में सजाएं जीत
0: जाती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब।
1: हमें मालूम था हमें मालूम था अंजामे उल्फत क्या होगा, लेकिन जहां दिल हार जाए वहां जफाएं जीत जाती
0: हैं। जीत जाती हैं। बहुत खूब,
1: शुक्रिया। किसी के सामने झुकना हमें मंजूर था, लेकिन अजब दस्तूरे दुनिया है, खताएं
0: जीत जाती हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
1: वो जिसको हमने समझा था रफीके जा उसके, बहुत नजदीक आकर भी सदाएं जीत जाती हैं।
0: क्या कहने, बहुत
1: शुक्रिया। हम अपने हक में कोई फैसला होने नहीं देते, हम अपने हक में कोई फैसला होने नहीं देते कि अपने ही खिलाफ अक्सर दुआएं जीत जाती।
0: क्या कहने, क्या कहने। वो किसी जफर खान नियाजी का खूबसूरत शेर था ना कि शिकस्त खा के भी फतह के जलूस में हूँ, शिकस्त खा के भी फतह के जलूस में हूँ, कि दे गए जो मुझे मात मेरे अपने हैं।
1: वाह, वफा की बात करते हैं तो हंसते हैं जमाने वाले, यहाँ किरदार हारते हैं अदाएं जीत जाती।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: हमें तो इश्क में एक शख्स का होना था मगर इस शहर में हर सू नफरत की हवाएं जीत जाती हैं। मोहब्बत में अक्सर अनाएं जीत जाती हैं, बेगुनाही में सजाएं जीत जाती
0: हैं। कहते ना कि वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक।
1: क्या बात है, बहुत हो
0: जी जी। और अगर हमारे जितने भी साथी हैं उनमें से अगर कोई आना चाहे तो हम उन्हें भी इनवाइट करते हैं। सुंदर, क्या ख्याल है आपका?
1: जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल ख्याल दुरुस्त है। और कमर जी को ले ले, वो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। कमर, और कमर जी आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए। और हैंडसम ये तो खैर सुनते हैं
0: जी जी।
1: और अभी कौन आया था हमारे साथ, रोमियो, रोमियो भी बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। रोमियो आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट भेजिए।
0: कमर आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपको हम शामिल प्रोग्राम करते हैं, आप आ सकते हैं। आई एम हियर आल्सो मज़ खान वेलकम, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। आप में से कोई भी शायरी अगर या कोई गीत भी गाना चाहे तो भी आप आ सकते हैं, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजिए, आपको हम शामिल करेंगे। और इस वक्त ना सिर्फ आप टिकटॉक पे हमारे साथ हैं बल्कि ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पे ये लाइव प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, जिसकी नशियात ना सिर्फ ब्रेडफोर्ड में आप सुन रहे हैं बल्कि शेफील्ड में लिंक FM के जरिए भी हमारी आज की ये नशियात आप सुन पाते हैं। काशिफ अली के आप हमारे साथ हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं जी। काशिफ वेलकम, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम काशिफ
2: जी। सर कैसे हैं? खैरियत से सर?
0: अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, कहां से हैं भाई, कॉल कर रहे हैं आप?
2: सर मैं लाहौर पाकिस्तान से।
0: जी जी वेलकम,
2: आप कैसे हैं?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाहौर जिंदा दलाने लाहौर। जी जी खुश आमदेद कहते हैं आपको। जी जी
2: सर मुझे शौक है, मतलब इतना अच्छा तो नहीं मैं गाता लेकिन मुझे शौक है, शौक की हद तक मैं गाता हूँ सर।
0: आज कुछ शायरी सुनाइए, शायरी सुना सकते हैं कुछ, कोई एक आध कोई गजल, क्या ख्याल है
2: सर? गजल कोई फरियाद वो मुझे याद है, मैं गाकर सुना सकता हूँ आपको।
0: चलिए फिर अगर आप गाते हैं तो आप गा दीजिए, कोई बात मसला नहीं। जी जी गाइए।
2: चले जी, आप लोगों के लिए जितने भी लोग हैं सबके लिए ये है, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा भी होगा कबूल कीजिएगा।
0: जी जी जी जी जरूर।
2: हाँ बल्कि एक गाना है, अब नाम मोहब्बत के इल्जाम तो आया है
0: बहुत,
2: सो ये सारी मोहब्बत करने वालों के लिए सर।
0: जी जी जरूर,
2: ये आप लोगों के लिए भी, आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी सर।
0: अगर मौसीकी के बगैर प्लीज गाएं तो बहुत अच्छा होगा, हमारी कुछ यहाँ पे मजबूरियां हैं। आप काइंडली आप BGM ना ऑन कीजिएगा प्लीज, आप इस तरह गाइए। जी जी
2: ये पंजाबी में आप लोगों के लिए।
0: जी जी

0: जी, काशिफ बहुत शुक्रिया आपका, हम अदा करते हैं, हमारे साथ और भी हैं सुनने वाले, तो आपसे हम माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाते रहिएगा जी सुंदर
1: इंशाल्लाह
0: जी। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत शुक्रिया। और सुंदर सर अपने अगले साथी को ले लीजिए
2: जी। जी ये कमर भाई हैं, कमर
0: जी
2: भाई आप ओपन करें म्यूट
0: एको बहुत आ रहा है, वजह क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत एको बात करते हैं,
2: कम कर दें प्लीज, सिस्टम ऑफ कर देना
0: जी। जी आप बीजीएम के साथ नहीं सुनाइएगा, आप बराह रास्त आ जाइए
1: जी। मैं शुरू करूं
0: जी? जी
2: जी जी म्यूजिक के बगैर

0: बहुत शुक्रिया आपका,
1: बहुत खूबसूरत है।
0: बहुत शुक्रिया आपका कमर साहब, अच्छा गीत आपने गाया है। और अब हमारे साथ लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे आबद मुगल साहब, आप चले गए हैं या इधर ही हैं?
1: चले गए
0: आबद जी, हमारे ये लिंक एफएम से हमारे साथी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। आपसे इल्तमास है कि अगर आप इधर ही हैं कहीं तो वापस आ जाइए, आपको हम लाइव लेना चाह रहे थे कि आपसे हम ये पोटवारी की बहुत अच्छी सुंदर से ये शायरी करते हैं, सुनाते हैं। और
1: जी
0: ये
1: जी
0: पोटवारी का इनका बड़ा यूनिक प्रोग्राम होता है। अब यूं करते हैं कि रेडियो के जो भी हमारे सुनने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए एक खूबसूरत गीत हम पेश करते हैं, और आप देखिए कि जो भी अगर आपके साथ सिस्टम पे मौजूद हैं टिकटॉक पे, तो हम वहाँ से भी कुछ अपने सुनने वालों को शामिल प्रोग्राम कर लेंगे।

0: Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद करते हैं और हमारा साथ दे रही हैं। सुंदर इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं और बड़े अरसे बाद आप सभी तक हम आवाज पहुंचा रहे हैं। जनाबे ए के अली साहब मिर्ज़पुरा से तशरीफ लाए हैं, बहुत सी दुआओं के साथ इन्हें खुश आमदेद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ए के अली साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे मिजाज आप?
0: अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपकी आवाज सुनी है तो दिल खुश हो गया। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे। आप हमारे रेडियो के बड़े रेगुलर और मुस्तकिल सामे हैं तो आपको हम बहुत मिस करते हैं कि आप बहुत कम आते हैं आजकल।
1: बस ये आप लोगों की मोहब्बत थी और यहाँ पे बड़े अच्छे लोग आते हैं, उनसे कुछ सीखने का भी मौका मिलता था
0: जी।
1: और मेरी तरफ से आपके तमाम सामीन नाज़रीन को गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलामती का पैगाम।
1: चंद शेर मैं आपकी नजर करता हूँ
0: जनाबे
1: नाज़रीन, सुनने वालों की।
0: जी जी।
1: कुछ यादगार शहरे सितम गर ही ले चले,
0: नासिर काज़मी की खूबसूरत गज़ल। जी जी।
1: कुछ यादगार शहरे
0: सितम
1: गर ही ले चले, आए इस शहर में तो पत्थर ही ले चले, रंजे सफर की कोई
0: निशानी
1: तो पास हो, रंजे सफर की कोई
0: निशानी
1: तो पास हो,
0: कुछ थोड़ी
1: सी खाक पहुंचाए
0: दिल भर ही ले चले, क्या कहने।
1: जे कह के छेड़ती है मुझे
0: दिल
1: गरफ्तगी, घबरा रहे हैं आप
0: तो बाहर
1: ही ले चले।
0: बहुत खूब।
1: इस शहर बेचराग में तू जाएगी कहाँ, इस शहर बेचराग में
0: जाएगी
1: तू जाएगी कहाँ, आए शबे फराक
0: तुझे
1: घर ही ले चले।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक और कलाम में नासर काज़मी का
0: सुनाता हूँ। इनायत कीजिए, इनायत कीजिए नासर काज़मी।
1: मंजिले गम की फिजाओं से लिपट कर रो लो, मंजिले गम की फिजाओं से लिपट कर
0: रो लो,
1: तेरे दामन की हवाओं से
0: लिपट कर रो लो। बहुत खूब, बहुत खूब।
1: जामे मैं पीने से पहले मेरा जी चाहता है,
0: वाह वाह।
1: जामे मैं पीने से पहले मेरा
0: जी चाहता है।
1: बिखरी जुल्फों की गुटाओं से लिपट कर रो लूं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: जर्द गुंचों की निगाहों में निगाहें डालूं,
0: आहा।
1: जर्द गुंचों की
0: निगाहों में निगाहें डालूं,
1: निगाहें डालूं, सुर्ख फूलों की कबाहों से
0: लिपट कर रो लूं। वाह वाह।
1: आने वाले तेरे रस्ते में
0: बिछाऊं
1: आंखें,
0: क्या शेर है, क्या शेर है।
1: आने वाले
0: तेरे रस्ते में
1: बिछाऊं
0: आंखें,
1: जाने वाले तेरे पांव से
0: लिपट कर रो लूं। क्या खूब है, वाह वाह।
1: अपने मजबूर तकद्दस के सहारे सागर, अपने मजबूर तकद्दस
0: के सहारे सागर,
1: देरो काबा की खुदाओं से
0: लिपट कर रो लूं। बहुत खूब। मुझे सैफुद्दीन सैफ का वो शेर इससे याद आ जाता है कि सैफ ये दिन तो कयामत की तरह गुजरा है, सैफ ये दिन तो कयामत की तरह गुजरा है, जाने क्या बात थी हर बात पे रोना आया। जनाब बहुत खूब। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, आपने टिकटॉक पे हमें लाइव ज्वाइन किया। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे, हंसते मुस्कुराते। जी जी,
1: मैं हाजिर होता रहूंगा जनाब।
0: बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सुंदर सर अभी हमारे साथ मौजूद थे जनाब ए के अली साहब, और इस वक्त हम ले लेते हैं जोके सफर, आपको इनकी कॉल एक्सेप्ट कर लीजिए।
2: अनम्यूट कीजिए प्लीज।
0: जी जी, जोके सफर आपको आवाज आ रही है तो आप
2: जी
0: आप सुनाइए कुछ।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: जी अपनी एक छोटी सी गजल लेकर हाजिर हुई हूँ।
0: सही सही सुनाइए।
3: कुछ इस तरह से है, आईना होता है अवेजा दीवार पर, चेहरा देखने के लिए जो मन की मूरत दिखा पाता नहीं, हर चेहरे की जीनत बढ़ाता है आईना, मगर दिल की सुंदरता छुपा जाता है आईना।
0: बहुत खूब,
3: शुक्रिया। और चेहरे पर जो खुशियां अया हो उनकी झलक दिखलाता भी है, मगर दिल में छुपे दर्द का अक्स बन कर क्यों किसी की दास्तां पढ़ पाता नहीं आईना।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: शुक्रिया। और आगे है कि काश दुखों को बांट जाता आईना, इतनी कशिश है इसमें अपनी तरफ खींच लाता है आईना।
0: बहुत खूब,
3: शुक्रिया। चाहे हो बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, जो भी किसी सूरत में हो, उसी सूरत में ढल जाता है आईना।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
3: शुक्रिया। हकीकत का अक्स दिखा कर कभी झूठ बोल पाता नहीं आईना, कभी दिखाता हुस्न के सारे रंग है और बुढ़ापे की झुरियां कहाँ छुपा पाता है आईना।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
3: शुक्रिया। देते हैं तशबीह दीवार के आईने को, दिल के आईने से, जब टूटे दीवार का आईना तो आवाज देकर किरचियां बखेर देता है।
0: बहुत खूब।
3: मगर जब दिल का आईना टूटे तो किसी के टूटे दिल की क्यों सदा सुनवाता नहीं आईना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे इससे एक शेर याद आया कि आईना ख्याल में सूरत उसी की है, आईना ए ख्याल में सूरत उसी की है जो दिल के पास पास है, दिल से जुदा नहीं।
3: दिल के पास पास है, दिल से जुदा नहीं, क्या कहना।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
3: चंद लाइने है कि किसी की गोरी रंगत को इतना मगरूर बनाता है और किसी की सांवली रंगत को एहसासे कमतरी में डूबा जाता है आईना।
0: वाह वाह।
3: किसी का दिल रखने के लिए क्यों झूठी तारीफ कर पाता नहीं।
0: वाह वाह।
3: क्या किसी के असल चेहरे को छुपा जाता है आईना।
0: वाह वाह, बहुत
3: लाइन है कि है सायरा का कहना, कभी किसी में ना कोई ऐब निकालिए, खुद को किसी से कम शक्ल ना समझिए, है सुंदरता खुदा की तहलीक में, तरह तरह मालिक ने नकोश बनाकर सजाया चेहरा कि खुद इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है आईना।
0: जी जी, आप नफरी नज्म लिखती हैं या आप शायरी करती हैं?
3: जी मैं शायरी करती हूँ, जिसमें गजल भी मैं शामिल करती हूँ, नज्म भी लिखती हूँ।
0: आपकी नफरी नफरी नज्म के आपकी शायरी बहुत क्लोज है ना, नफरी नज्म जो होती है उसके आपकी शायरी बहुत क्लोज है। जी
3: जी जी जी, जी।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, आप तशरीफ लाते रहिएगा, बहुत शुक्रिया,
3: थैंक यू सो मच,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे थी सारा, आप बर्मिंघम से हमें ज्वाइन कर रही थी, बेहद शुक्रिया, ज़ोके सफ़र। और सुंदर से देखिएगा, अगर हमारे कोई और भी साथी हैं तो उन्हें ले लेंगे, नहीं तो एक सुनने वालों के लिए खूबसूरत गीत सुनाते हैं। हमारे पास तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 15 मिनट हैं, मजीद अगर कोई हमारे सुनने वाले आना चाहें। हमारे
4: मैं सुनाती हूँ।
0: जी जी, आप सुनाइए। जी जी,
4: चलें। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
4: हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो, एहसास तुम्हारे जैसा था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
4: मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा फिर एहसास हुआ वो लम्स तुम्हारे जैसा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहें।
4: तन्हा मैं चला फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, मैं समझा तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही न बाकी आहट भी, मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था।
0: क्या कहने, क्या कहने।
4: बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। अंदाज तुम्हारे जैसा,
0: आज से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो,
4: क्या कहने का।
0: जी जी, बहुत खूबसूरत गजल थी। और इससे एक शेर भी याद आता है ना, इसी हवाले से खूबसूरत शेर था किसी का आने के हवाले से, कि हवा के रुख पे नशे मन बनाए बैठे हैं, हवा के रुख पे नशे मन बनाए बैठे हैं, कभी तो लाएगी बादे सबा पयाम उनका।
4: वो कहते हैं ना, आईना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी।
0: ऐसे जी जी ऐसे ही है। और तहसीन भाई ने बड़े दिनों बाद हमें याद किया है। तहसीन भाई दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद, माशाल्लाह आपने हमें पैगाम भेजा कि आप हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, सलामत रहें। बहुत एक मुद्दत हुई है आपसे मुलाकात नहीं हुई है, आप भी इधर उधर और हम भी कभी इधर और कभी उधर, और इस तरह आपसे मुलाकातें नहीं रहती हैं। हमारे प्यारे दोस्त, हमारे भाई, अल्लाह पाक आपके रिज्क रोजी में, आपके कारोबार में और तरक्की दे और आप मजीद ब्रांचेस बनाते जाएं अपने इस कारोबार की। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बताइएगा अगर कुछ सुनना चाहें तो आपके लिए हम ज़रूर पेश करेंगे। तहसीन भाई ब्रैडफोर्ड से हमें ज्वाइन कर रहे थे। और कुछ और शायरी है तो सुनाइए, थोड़ा सा ही वक्त है हमारे पास, 10 मिनट रहते हैं। सुंदस
4: जी, एक ही से सुनते हैं, क्या ख्याल है?
0: एक ही अली हमारे साथ मौजूद है अभी।
4: हाँ जी।
0: सुभान अदील ने हमें ज्वाइन किया, इनसे पूछ लें अगर ये कुछ सुना।
4: चले, आज मेरा ख्याल वो है बिजी।
0: जी जी।
4: तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, दिल के मारों का ना कर गम कि ये अंधे नसीब, जख्म भी दिल में ना होता तो
0: कराहे जाते। शानुल हक की खूबसूरत गजल है। जी जी जी जी सुनाइए। जी क्या कहा? बड़ी अच्छी गजल,
4: दो शेरी सुनाए इसकी।
0: अच्छा, आम से उल्फत, इसकी किसी ने पैरोडी बहुत अच्छी बनाई थी।
4: अच्छा।
0: मुझे याद, अगले रोज ही कहीं टिकटॉक पे ही शायद कहीं देखी है, बड़ी ही प्यारी किसी ने, यानी कि इसके जो जितने तकाजे थे ना किसी ने पूरे किए इसकी पैरोडी के, कि हम से उल्फत के तकाजे जो निभाए जाते, कुछ खाने पीने के हवाले से किसी ने बनाया था या कुछ ऐसे, लेकिन बड़ा ही अच्छा था। जी जी, तो
4: यूं कर ये आजकल ना AI जब से शुरू हो गया ना, वो टाइपिंग सारी खराब कर देते।
0: वैसे जितनी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कुछ न कुछ कहीं से ठंडी हवा का झोंका भी जरूर आता है। ये देखिए AI ने जो नियायती जो चीज लोग चाह रहे होते हैं, कि जैसे किसी भी हवाले से, कि जिनका कोई,
4: मोस्टली लोग टाइपिंग करते हैं ना वहां से कि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन वो सारी टाइपिंग में शायरी में मिस्टेक हो जाती है, पढ़ते वक्त बंदा सोचता है यार मैंने क्या उठा लिया।
0: अच्छा, ये AI से लोग शायरी भी करते हैं आजकल क्या?
4: अब सब कुछ होता है,
0: हमारे कई आते हैं ना व्यूज, तो मुझे लगता है उनकी शायरी थी कि मुझे लगता है कि AI से बनाएगी शायरी।
4: जी जी बिल्कुल ऐसा ही है,
0: हालांकि शायरी का AI से कुछ ताल्लुक होता नहीं है। शायरी तो एक दिली जज्बात का इजहार होता है, और उसमें जितना खलूस से वो लिखी जाती है और जितनी आमद से होती है, उतनी वो शायरी दिल में जगह बनाती है। लेकिन बाद लोग सोचते हैं कि शायद अगर आप मेहनत करो, लिखते रहो, लिखने से आप कभी शायर नहीं बनते। शायर के लिए किसी ने क्या खूब कहा कि हक तो ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, इसमें कुछ मिडिल वाली बात होती नहीं है सिरे से। या आप शायरी आपको आमद होती है, खुदादार चीज़ है, और या फिर आप लिख सकते हो या फिर आप नहीं लिख सकते हो, इसमें मिडिल चीज कुछ नहीं होती। बाद लोग सोचते हैं कि शायद मेहनत करके आप शायरी लिख सकते हैं। हाँ, अगर
4: वालेकुम सलाम।
0: जी जी, अगर आप में जोक हो तो आप अच्छी शायरी सुना सकते हैं, आप किसी की गजल याद करके सुना सकते हैं। आप जोक अहले जोक होना भी मैं कहता हूँ कि ये शायरी की शायद पहली मंजिल होती है।
4: Exactly.
0: जब आप शायरी का आपको जोक को शौक हो, आपको जुबानी अशार याद हों, आप सुना सकें, महफिल भरी महफिल में आप बैठ के कागज के बिना देखे आप पढ़ सकें, तो ये शायद उसकी इब्तदा होती है। और उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे नहीं होता अपनी जुबान में कहते हैं कि जैसे आपको एक ट्रिक आ जाता है, सलीका आ जाता है, ढंग आ जाता है, डब आ जाता है, उसमें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप तबाजमाई करते हैं, आप अपनी ब्याज जो है उसका इजहार करते हैं। तो अच्छे लिखने वाले भी मौजूद हैं, और आजकल पाकिस्तान में बेशुमार, एक समझ लीजिए कि शोरा की एक खेप आई हुई है जिनमें मजार्टी बेवजन लिखने वालों की है माशाल्लाह। चंद हमारे एक साथी हैं, क्या नाम है, फरत अब्बास शाह, तो उन्हें भी ये चीजें बड़ी नागवार गुजरती हैं कि जब कोई उनकी गजल चुराता है तो वो उस पे पूरे के पूरे, आपने भी शायद उनके कुछ क्लिप्स देखे होंगे, तो वो बड़े गुस्से में वो बजते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं।
4: बानो जी वेलकम।
0: जी जी
4: आ ही गई हैं तो आ जाएं प्लीज जल्दी से और हमें कुछ सुना दीजिए।
0: जी जी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट रहते हैं अगर आपके साथ।
4: बानो जी इनका मैं बताती चलूं कि वो बहुत अच्छी शायरा हैं।
0: अच्छा अच्छा।
4: और अपना कलाम भी लिखती हैं, और अगर उनके पास टाइम है तो आके हमें सुना दीजिए।
0: जी जी हम उनका इंतजार करते हैं, उन्हें कहिए कि रिक्वेस्ट भेज दें ताकि हम उन्हें फिर ऑन द एयर ले
4: लीजिए। मैंने भेजी है लेकिन
0: उबैद
4: गलबल बिजी होंगी।
0: जी जी चलिए कोई बात नहीं है,
4: तो हम बात करते हो अगर हो सकता है तो बाना जी प्लीज आ जाए।
0: जी जी तो हम बात कर रहे थे कि शायर होना और शायर ना होना ये दो अलग से चीजें हैं।
4: माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम।
0: जी
4: कैसी है बाना जी?
5: मैं ठीक हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैंने कहा देखो।
4: हाँ तो आप चले आए हो, इसका बहुत शुक्रिया।
0: जी जी
5: मैंने समझा शायद आपकी ब्रॉड है।
0: जी जी
4: मेरी ही समझे ना।
5: अच्छा
4: चले, और अब आप ऐसा करें कि हमें कुछ सुनाएं। आप उन्हें यार लिख जा रही हैं आसम जी?
0: जी जी जी मैंने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है बानो, आप हमारे जी, साथ हैं। जी जी
4: हाँ
0: अस्सलाम वालेकुम।
4: ठीक है आप इनको ऑन एयर लेके जा
0: जी जी ऑन एयर
4: रेडी है सुनाने के लिए। ओके
5: ऑन एयर का मतलब मैं
0: समझी, हम रेडियो पे आपके
4: प्रोग्राम जा रहे
5: हैं। हाँ ओके बहुत शुक्रिया
0: जी। मैंने
5: क्या आपको अपना कुछ कलाम सुनाऊं?
0: जी जी
4: जी
5: चले सुंदर साहब तो सुन चुके हैं, इनके लिए नया।
0: जी जी जरूर इनायत कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप कैसा लिखते
5: हैं। जी जी ये मेरी किताब दश्ते सुखन से एक मेरी गजल है।
0: आप कहाँ से कॉल कर रही हैं और कहाँ होते हैं आप?
5: मैं बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं मॉरिशस में 40 साल से मैं मॉरिशस में रहती हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। जी
5: और गजल इस तरह से है कि एक कैफियत से रुख पे तारीख है मुर्शिदा।
0: हाँ
5: एक कैफियत से रूह पे तारीख है मुर्शिदा, दीदार हुस्न आँख पे भारी है,
0: भारी है। वाह वाह बहुत खूब
5: बहुत शुक्रिया। और जब से तुम्हारे नक्शे कदम पर चली हूँ मैं,
0: वाह वाह
5: जब से तुम्हारे नक्शे कदम पर चली हूँ मैं, उस दिन से जिंदगी ये तुम्हारी है मुर्शिदा।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये फिर से पढ़िएगा। मुकर्रर मुकर्रर।
5: जब से तुम्हारे नक्शे कदम पर
0: चली हूँ मैं
5: उस दिन से जिंदगी ये तुम्हारी है मुर्शिदा।
0: बहुत खूब बहुत खूब
5: बहुत शुक्रिया। इस पर भला विशाल का पंछी करे भी क्या?
0: आहा
5: इस पर भला विशाल का पंछी करे भी क्या, ये आंसू की झील है जो खारी है मुर्शिदा।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
5: और जैसे हवा के सामने रखा हो एक जरा,
0: वाह वाह
5: जैसे हवा के सामने रखा हो एक जरा, ऐसे तमाम
0: हाँ हाँ हाँ क्या कहने, बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है। ऐ शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, ऐ शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह,
5: गुजारी है इस तरह। बिल्कुल
4: बहुत अच्छे।
5: और एक ख्वाब है कि आज भी लड़ता है मेरे साथ, एक ख्वाब है कि आज भी लड़ता है मेरे साथ, एक जंग है कि आज भी
0: जारी है। क्या कहने लाजवाब है, वाह वाह बहुत खूब
5: बहुत शुक्रिया। और हासिल गजल
0: इनायत इनायत
5: शेर जो है वो ये कि ऐसे में थमती हूँ लहू शारी में अब,
0: आहा
5: ऐसे में थूकती हूँ लहू शारी में अब, जैसे जिगर की पुश्त पे आरी है मुर्शिदा।
0: क्या कहने क्या कहने लाजवाब है, वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब
5: शुक्रिया। ऐसे में थूकती हूँ लहू शायरी में अब, जैसे जिगर की पुश्त पे आरी है मुर्शिदा, और कुछ दिन से जिंदगी में कोई आ गया है फिर,
0: आहा
5: कुछ दिन से जिंदगी में कोई
0: आ गया है फिर,
5: आ गया है फिर कुछ दिन से जिंदगी मुझे प्यारी है,
0: प्यारी है क्या कहने क्या कहने, बहुत खुश।
5: मक्का पेश करती हूँ कि बानो ने किस तरह से गुजारी है जिंदगी,
0: बानो ने किस तरह से गुजारी है जिंदगी,
5: बानो ने किस तरह से गुजारी है जिंदगी, चेहरे पे दास्तां वो सारी है मुश्किल।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
5: शुक्रिया
0: बहुत अच्छे।
5: एक कैफे से रूह पे तारी है,
0: तारी है, वाह वाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक गजल और भी सुना दीजिए, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, एक गजल और इनसे।
6: हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ भी आए थे लेकिन वो चले गए। हाँ।
0: जी जी
5: एक गजल और।
0: जी जी एक गजल और सुना दीजिए, छोटी वाली। जी
5: अच्छा, एक गजल बड़ी प्यारी सी है।
0: जी जी नाज़
5: चले सुनिए। बुराई के लिए तलवार औरत हूँ मैं,
0: वाह।
5: बुराई के लिए तलवार औरत हूँ, अगर ना मैं बहुत दीदार औरत हूँ,
0: बहुत खूब।
5: दिखाती हूँ उन्हें मेरा सीधा सीधा, दिखाती हूँ उन्हें मेरा सीधा सीधा, मैं दुशीजाओं की सरदार औरत हूँ,
0: बहुत खूब।
5: बहुत शुक्रिया। चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर सब, चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर सबको, मैं दुनिया में करायादार औरत हूँ,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
5: बहुत शुक्रिया। नहीं लेती किसी भी शख्स का एहसान,
0: वाह।
5: नहीं लेती किसी भी शख्स का एहसान, पता सबको है मैं खुददार औरत हूँ,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
5: बहुत शुक्रिया। और मुझे इसके अलावा चाहिए है क्या,
0: आहा।
5: मुझे इसके अलावा चाहिए है क्या, कि काफी है कि बाकिरदार औरत हूँ,
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
5: बहुत शुक्रिया। और बजाहिर हूँ बहुत सीधी सी लेकिन, बजाहिर हूँ बहुत सीधी सी लेकिन, हकीकत में बड़ी दुश्वार औरत हूँ,
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
5: किसी को भी ना मुश्किल में पुकारूंगी, किसी को भी ना मुश्किल में
0: पुकारूंगी,
5: मसाइल से अगर दो चार औरत हूँ,
0: बहुत खूब।
5: और मक्ता पेश करती हूँ कि मुझे दावा नहीं कुछ भी मगर बानो, मुझे दावा नहीं कुछ भी मगर बानो, सभी कहते हैं नेकूकार औरत हूँ, बुराई के लिए तलवार औरत हूँ, मगर ना मैं बहुत जिदार औरत।
0: बहुत अच्छे
6: बहुत ही खूब जबरदस्त बाना जी, हमेशा की तरह
0: नाजवाब।
6: थैंक यू सो मच,
5: आपका
6: बहुत शुक्रिया सोने, आपका भी बहुत अच्छा लगा
0: बानो, बहुत शुक्रिया। पहली बार आप तशरीफ लाइए, तशरीफ लाते रहिएगा, बहुत नवाजा साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी सुंदर जी,
6: जी जी मैं सुनाऊं आप,
0: हमारे पास बस एक दो शेर आप सुना दीजिए तो फिर इजाजत चाहेंगे।
6: अच्छा चले। तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, खुद को इतनी भी अजियत नहीं दी जा सकती।
0: बहुत
6: जानते हैं कि यकीन टूट रहा है दिल पर, फिर भी अब तक ये वहशत नहीं की जा सकती।
0: बहुत खूब।
6: सो रोशनी के लिए दरवाजा खुला रखना है, शब से अब कोई इजाजत नहीं ली जा सकती,
0: बहुत।
6: इश्क ने हिजर का आजाद तो दे रखा है, इससे बढ़कर तो रियायत नहीं दी जा सकती।
0: बहुत खूब।
6: इससे बढ़कर तो रियायत नहीं दी जा सकती।
0: बहुत खूब बहुत
6: शुक्रिया। थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशात सुनी, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और सुंदर से अगले प्रोग्राम में हमारा साथ जरूर दीजिएगा। AMK वो आज नहीं तशरीफ ला सकी, उन्हें मिस कर रहे हैं, अगर वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आएंगी। और इसी तरह हीर भी आज तशरीफ नहीं लाई, शायद वो गालबन वो सुबह के वक्त ज्यादा बिजी होती हैं हीर, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई,
6: हो सकता है भूल गई हो।
0: जी जी
6: तो
0: इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक अपने सभी सुनने वालों से इजाजत चाहेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए,
6: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।

0: transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
3: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
2: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
6: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार।
10: सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
6: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: करूंगी।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274 494 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: exchange, additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
6: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, Bradford Asian Radio.
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team
9: Bradford on 01274 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पर लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.